0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहाँ जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम हारा, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। ऐसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते, हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार है एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली, जब दास इतना सुंदर सुंदर

कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें। नारद जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कही उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता है, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहनकर बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी, ऐसो कौन सो बाबा जी आगो। बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? बोले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दो, तू कहेगो मुकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के

मेरे छोरा पे चढ़ गए तो। अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सापन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सापन पे नाचे हो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गए हो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गए। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूँ। भैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काही के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। भैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी। बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे मैं अपनो काम धंधो समान, और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। बोले क्या, बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई तो आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है, तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है।
मैया बोली, गोपी कहा करो? बोले, रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे? गोपी बोली, मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई। गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो। मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई। गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली, अब कहा करे? बोले, कहा करे का नजर उतारो या की? बोले, कैसे नजर उतारे? बोले, जा रसोई ते वो लेके आ, राई नून लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे? ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली, मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली, कहा बीमारी है? बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले, मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया, अब वह भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी, भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले, मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई नहीं तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगो, वो भूत उतारे हो। तो गोपी, अब कौन को बुला के लाए? मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले, मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी, नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है। तो जाके पूछी, बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले, पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले, हमारी मैया है ना, वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे वालों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले, हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले, अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी, मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आ, एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती, मैया ओ मैया, बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी? बोले, मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले, ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकु जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली, मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कु बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली, मोकू तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत, दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छोरा को, बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है,
डाकर के चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बालकृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोड़ा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई, और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है। बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है।

जोर से हंस दी। भैया बोली, हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा, हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी। अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो तोपे उतारने आवे, पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे? मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए, ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले, क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले, लाला को देखनो। बोले, वाह के ताई, तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगो। मैया बोली, ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले, तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले, ना ना ना ना बाबा, रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी, पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्ने ने थोड़ा संवार के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले, मैया, अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने। मैया तोकु पतो नहीं, तेरो कितनो नाम रोशन करेगो। मैया तोकु पतो नहीं, यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो। मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली, बाबा मैंने तो कु काम की बात पूछी, और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो या के ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले, मैया तू बता तो कु तेरे निया कहा चाहिए? बोले, मोकू तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले, 4 दिन को तेरा छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले, ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है, तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देवो। तो बाबा तू ही बता, छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, मोकू रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है? अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले, मतलब? बोले, मतलब मैया, तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं, 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले, कहाँ सोच रही है मैया? बोले, बाबा न्यू सोच रही हूं, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा, काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा, मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया, अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती, ना ना बाबा, तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यही रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, 4 स्थान पर 4 रक्षक बनकर

0: आज हमारे पास बात करने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी दिल की बात कहने के लिए कोई क्यों नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और शो लेकर आ गई हूँ नया नजरिया। आज बीके सिस्टर्स के साथ बात करेंगे अकेलेपन की। वेलकम मॉम।
1: ओम शांति।
0: ज्योति जी, पहले से ज्यादा हम आज हर चीज से कनेक्टेड हैं, फिर भी हमें अकेलापन महसूस होता है, ऐसा क्यों?
2: क्योंकि आज हम सबके बीच रहते हुए भी हम सबके साथ होते नहीं है
0: जी।
2: और इसका बहुत ज़्यादा हम देखते भी हैं कि पहले के समय में जब हम होते थे तो टेलीफोन्स होते थे, तो जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। मैंने यहाँ तक कि अगर अपने पास फ़ोन नहीं है तो हम दूसरों से भी कनेक्टेड रहते थे, पड़ोसियों से भी कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि उनके घर में शायद फ़ोन है और हमारे पास आना है तो उनसे कनेक्ट रहते थे। आज की डेट में क्या हो गया, आज घर में चार मेंबर हैं, चारों अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में जो है इंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं। तो आज जब एक परिवार के चार सदस्य ही आपस में बैठ के अकेले हैं, तो आप कितनी भी भीड़ में आप चले जाएं। पहले हम ट्रेन का सफ़र करते थे, मुझे याद आता है जब हम बचपन में जाया करते थे ट्रेन से, तो वहाँ पर क्योंकि फ़ोन तो होते नहीं थे, तो ट्रेन के सफर के दौरान ऐसा आपस में रिलेशन बन जाता था कि लास्ट तक जाते जाते लगता था कि फैमिली दूर हो रही है। और आज के टाइम में पड़ोसी भी क्या है ये पता नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी दुनिया एक डिब्बे में सीमित कर दी है। इसीलिए आज हम सबके बीच में भी रहते हुए हम अकेले हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करते हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं, हम उनसे शेयरिंग कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं, और समय आने पर वो हमारे नजदीक नहीं होते हैं, तो इसीलिए आज हम अकेले हो गए।
0: बिल्कुल सही बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़, पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग फैल रही है यार।
1: पुलिस,
2: पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार। 89.6
3: रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: कभी कभी ना सबके बीच होते हुए भी मन के अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस होती है। शोभा जी, इसी को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोगों के बीच रहकर भी हम अंदर से अकेला क्यों फील करते हैं?
1: ऐसा इसलिए होता है कि हम सब लोगों के बीच में तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में जो थॉट्स का जो तूफान चल रहा होता है उसमें हम उलझे हुए होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, उसका हम कहीं से सोल्यूशन नहीं पाते हैं। लोगों के पास बैठते हैं तो हम अपनी बात को पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो हम अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए होते हैं। तो उनके बीच रहकर भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे मन में तो वही सब बातें चल रही होती हैं। इसलिए हम लोगों के बीच में रह के भी अकेले अपने आप को महसूस करते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

बोलो ना तुम दरवाजा पर आया नहीं रिप्लाई, और जो फ्रस्ट्रेशन में बोला आज वो बन गया मेरा स्टाइल। फिर दिल की आवाज सुनी सबने बिना कोई माइक, नाउ आई एम रेडी फॉर द फ्लाइट एंड आई एम रेडी फॉर द फाइट। सारे कमेंट सारे लाइक।

0: भेजे पलक।
1: हम दूसरों से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से कनेक्ट होना भी भूल जाते हैं? ज्योति जी, क्या खुद से कनेक्शन कम होना भी लोनलीनेस की एक वजह हो सकती है?
2: अगर हम पहली सिचुएशन लेके आके कोई मेरे नजदीक नहीं है अपना, उससे भी हमें लोनलीनेस फील होता है, लेकिन वो इतनी देर तक का नहीं होता है, क्योंकि आजकल गैजेट्स इतने हो गए हैं कि दूर व्यक्ति भी दूर नहीं लगता है। लेकिन जो असली लोनलीनेस की बात है वो है हमारे अंदर का खालीपन। हम अंदर से खाली हैं, हम अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तलाश हम अपने अंदर ना करके हम बाहर घूम रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें खुशी शायद मेटलिस्टिक दुनिया में मिलेगी, और उन्हीं के अंदर ही हम अपनी खुशियों को तलाश रहे हैं, और इसी वजह से आज वो चीज़ें तो हम कहें कि कुछ समय के लिए हैं, जिसको अगर हम अध्यात्म की भाषा में कहें तो खत्म होने वाली चीज़ें, विनाशी चीज़ें हैं, उनके पीछे हम जा रहे हैं। लेकिन असली खुशी हमारी कहाँ है? क्या हम असली चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं? क्या मेरी खुशी की कोई वस्तु, व्यक्ति या जगह ही कोई जो कहीं आधार हो सकता है? उसका बेस ही हमने जब ऐसा लिया हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे पास रहेगा तो मैं खुश हूँ, किसी ने मुझसे मीठा बोला तो मैं खुश हूँ, किसी ने मेरी पसंद की चीज़ बनाई है तो ही मैं खुश हूँ, अगर नहीं है तो मेरा मूड ऑफ है। तो ये जब हमारी चीज़ें विनाशी चीज़ों पर हम रहते हैं और अंदर से अपने आप को जानते ही नहीं है कि मेरी खुशी की वजह क्या है, हम कहाँ ढूंढे, तभी ही जाकर के वो लोनलीनेस, उसी को ही खालीपन, एक्चुअल में लोनलीनेस वही है जो अंदर से हम बिल्कुल खाली हैं, अंदर से हमने अपने आप को किसी भी चीज़ से भरा नहीं है, लेकिन बाहर की चीज़ों से हम भरपूर हैं। तो अपने अंदर भरे सुख को, शांति को, और भरपूरता है, भरने की जरूरत नहीं है, भरपूरता है, बस उसकी तरफ नजर करनी है।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: लोनली फील करना और अकेले होना शायद दोनों एक बात नहीं है। शोभा जी, अगर कोई अंदर से लोनली फील कर रहा हो तो रियल कनेक्शंस और इनर पीस वापस कैसे आ सकती है?
1: देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है अकेलापन और दूसरा होता है एकांत। आज के समय में हम अकेले तो हो गए हैं, अकेले कमरे में ही बैठते हैं, अकेले कहीं भी अपने आप को रखते हैं, लेकिन अकेले होते भी हमारे मन में बहुत सारे विचार या बहुत सारी बातें, और नहीं तो आजकल मोबाइल हम सबके हाथों में हो गया है, जिससे हम अकेले होते भी अकेले नहीं होते हैं। लेकिन अभी ज़रूरत है हमें एकांत में जाने की। एकांत का मतलब होता है एक के अंत में, अर्थात हम खुद अंदर अपने भीतर उतरें, अपने अंदर की जो कमी या कमजोरी है उसके बारे में हम खुद ही अपने आप को चेक करें। जब हम अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं तो हम अपनी कमियों को भी समझ पाते हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना है उसको भी हम देख पाते हैं, और फिर हम खुद से भी कनेक्ट होते हैं। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने अंदर एक पीस जिसकी हम ज़रूरत महसूस करते हैं, एक एनर्जी जो हमें चाहिए वो हमारे अंदर धीरे धीरे आती है। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है एकांत की, अकेलेपन की नहीं, एकांत की।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: बीके सिस्टर्स, थैंक यू सो मच इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
1: ओम शांति।
0: दोस्तों, कभी कभी ना हमें ज्यादा लोग नहीं

से एक जेन्युइन कनेक्शन चाहिए होता है और सबसे जरूरी कनेक्शन खुद के साथ होता है। मैं हूँ आज पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे नए नजरिया में एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग एजी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मेरे फरीदाबाद वालों? और देखो यार, हालचाल पूछने के लिए आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त आरजी अंजलि। और आप सुन रहे हैं मुझे अंजलि ऑन एयर पर रेडियो महारानी 89.6 एफएम से, जहाँ हर रोज सुबह 7 से 11 होती हूँ, बहुत सारी बातें लेकर आती हूँ, बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आती हूँ। और अगर इस दिन की बात करें तो एक अलग ही स्वैग होता है आज के दिन में। ना मंडे वाली टेंशन होती है, ना फ्राइडे वाली एक्साइटमेंट होती है, कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता है। और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो सेटिस्फेक्शन इस चीज का मिलता है कि मंडे वाली भागदौड़ नहीं है, और वो फ्राइडे वाला मूड भी नहीं है कि यार लेजी मूड। तो ये ना थोड़ा सा एनर्जी को कंबाइन करके हमें लेकर आता है, इसीलिए शायद हम लोग ना एक्साइटमेंट वाले मूड में चले जाते हैं। और बहुत सारी बातें करूंगी आपके साथ, लेकिन सबसे पहले क्या बनता है, सुबह वाली चाय। तो सुबह वाली चाय की पहले से प्ले लीजिए। तो आज बातें थोड़ी चटपटी होने वाली है, लेकिन चटपटी बातों के साथ साथ और क्या होने वाला है, वेदर का अपडेट मिलने वाला है, फरीदाबाद की लोकल खबरें आप तक पहुंचने वाली है, साथ ही बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है सब कुछ तक लेकर आऊंगी। खुद को साइबर अटैक से कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी आपको बताऊंगी। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, फरीदाबाद की पहले भी पूछने वाली हूँ, आपकी दिमाग की बत्ती भी जलाने वाली हूँ। तो बस बहुत सारी बातें, एंटरटेनमेंट का बहुत सारा डोज आपको मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम है, 4 घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, प्यार से ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

हाँ जी, दो चार दिनों से बारिशों को बहुत मिस किया जा रहा था। इतना मिस किया जा रहा था कि भगवान ने बोला तथास्तु, बच्चों बारिश एंजॉय करो। और इसी के साथ ना, अगर आज मॉनसून के मूड की बात करूँ ना, तो देखिए आज वेदर का मूड ना बहुत ही ज्यादा हसीन है। हसीन मैंने इसलिए बोला, एक बार बाहर जाकर तो देखिए, मौसम बहुत ही प्यारा है। और इस मौसम में ना गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए तो सही में दिन बन जाए। और देखिए सुबह की बात करूँ ना मैं, तो आज का मौसम पूरा दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। हैवी थंडरस्टॉर्म आज आपको मिलने वाला है। हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 34 डिग्री। और इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है। तो भाई देखिए 7 से 9 बजे के बीच आज बारिश, थंडरस्टॉर्म, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिएगा और रेनकोट भी लेकर जाइएगा। और पता है ना, जब बारिश होती है ना तो ट्रैफिक जरूर मिलता है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो भाई बहुत सारी बातें लेकर, बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ खास है। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: डॉक्टर कॉलिंग।
3: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन। एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।
2: डॉक्टर कॉलिंग।

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, फिर से आ गए करने बातें बहुत सारी, लेकिन बातें करने से पहले ना आज आपको ये बता देती हूँ कि आज का कैलेंडर क्या कहता है। तो देखिए, आज का तारीख पर तारीख के सेगमेंट में ना मैं आज एक ऐसा डे लेकर आ गई हूँ जहाँ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेंस ग्रूमिंग डे। यानी कि अगर मैं इस दिन की बात करूँ ना, तो ये दिन उन लोगों के नाम है जो अक्सर हेयर कट को ही और शेविंग को ही ना अपनी ग्रूमिंग समझ लेता है। कितने भोले होते हैं ना मेंस। सो इसीलिए सोचा क्यों ना आज के दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाए। मेंस ग्रूमिंग डे हमें ये याद दिलाता है कि ग्रूमिंग सिर्फ गुड लुक्स के लिए नहीं बल्कि पर्सनल हाइजीन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। फिर बात करें रेगुलर हेयर कट, बियर्ड केयर, क्लीन नेल्स और साथ ही स्किन केयर, जो हमेशा अवॉइड किया जाता है। और इसी के साथ सबसे बेसिक है डेली हाइजीन। तो भाई देखिए, ये छोटे छोटे हैबिट्स है जिनका आपको ख्याल रखना है और फिर जो आपकी ये पर्सनैलिटी है ना, इसमें चार चांद लग जाएंगे। और भाई अगर ग्रूमिंग का मतलब आपको ये लगता है ना कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद के ही आप अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। क्लीन, नीट और कम्फर्टेबल रहना ही ग्रूमिंग का पार्ट है। सो जितने भी पूकी मेंस मुझे आज सुन रहे हैं ना, ये आपके लिए है भाई। अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत एक्सपेंसिव शूज तो खरीद लेते हैं लेकिन कभी ना मॉइस्चराइजर नहीं खरीदते। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 FM, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

हेलो हेलो जी, तो चलिए फिर बात करते हैं बॉलीवुड बस की। और आज का बॉलीवुड लेकर आ गया है आपको बिग बी के पास, जिन्हें देखकर ना बस ये लगता है कि बॉलीवुड में अपनी जो लेगेसी बनाई है ना, इसे तो कोई कंप्लीट ही नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है, जो अमिताभ बच्चन है, इनके शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही टफ था। तो और ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने बताई है। KBC 18 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के गोल्ड मेडलिस्ट के साथ जब उन्होंने बात की तो ये बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें उनकी हाइट को लेकर काफी ताने सुनने पड़ते थे। और कभी ना डायरेक्टर से उन्हें ये भी कहते थे कि भाई बस बहुत हो गया, तुम ना अपने घर चले जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई जिस हाइट को ये कर समझते थे ना, इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी ये हाइट एक दिन कमाल कर देगी और बस इनकी सिग्नेचर पर्सनैलिटी बन जाएगी। और तभी से लेकर ना आज तक बिग बी ना हम सबके दिल पर राज करते हैं। सो देखिए, आज की स्टोरी ना हमें ये रिमाइंडर देती है, जो चीज आज आपकी वीकनेस लग रही है ना, हो सकता है एक दिन आपकी आइडेंटिटी बन जाए। सो इस बात का ख्याल रखिएगा, आज एक पॉजिटिव मंत्रा दिया है मैंने आपको। सो इसी के साथ मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: Punjabi pop culture runs through the blood.
1: एज इंडियंस ना हम इंडिया को इतने खूबसूरती से नहीं समझ पाते हैं जितना कि फॉरेनर्स समझ पाते हैं। ये जो अपनी वाइब है ना इंडिया की बहुत यूनिक है, ये ना सबको अपना बना लेती है। और इसी के चलते मैं आज की एक बहुत ही स्वीट सी स्टोरी लेकर आई हूँ। पोलैंड के कंटेंट क्रिएटर जिनका नाम डोमिनिका है, इन्होंने इंडिया को लेकर ना अपनी ओनली इन इंडिया लिस्ट शेयर की है। और बताइए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया इंडिया में ना अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ना थोड़ी ही दूर पर मिलेगी एक चाय की टपरी, पैक्ड ट्रेन मिलेगी और हर जगह मिलेंगे आपको क्रिकेट खेलने वाले लोग। तो भाई देखिए हर फेस्टिवल को एनर्जी के साथ मनाया जाता है, इंटरेस्टिंग लाइट्स नजर आती है, ऐसा इन्होंने अपनी लिस्ट में मेंशन किया इंडिया को लेकर। और ऑनेस्टली ये सही भी है, हम इंडियंस के लिए ना ये सब डेली लाइफ की चीजें हैं, इसीलिए हम इन्हें इतने प्यार से नहीं देख पाते, इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन ये जो बाहर से आने वाले लोग है ना, यानी कि फॉरेनर्स है ना, ये सारी चीजें ना ये अपने देश में मिस करते हैं। और तब जब ये इंडिया आते हैं ना, इनका मन ऐसे गार्डन गार्डन हो जाता है, खासकर दिवाली वाले टाइम पर। तो भाई देखिए ये सारी जो चीजें है ना, ये इंडिया को खास बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आई लव माई इंडिया। भाई आई सीरियसली लव माई इंडिया। इंडिया में क्या कुछ नहीं है, इंडिया में सब कुछ है। अगर हम एक्सप्लोर करें ना तो सबसे खूबसूरत देश है इंडिया। तो देखिए मैंने तो बता दिया कि मुझे इंडिया के बारे में क्या पसंद है, मुझे इंडिया की हर एक जगह पसंद है। अब आपको क्या पसंद है और कौन सी ऐसी वाइब है जो इंडिया को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है, पता है ना बताने के लिए कहाँ आना है। तो फटाफट चाहिए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर हमें ये बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं इंडिया को। और साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

हेलो हेलो जी, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आज की सोशल स्यापा के बारे में। तो देखिए, आज का जो सोशल स्यापा है ना, वो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि आज ना पुलिस के पास एक ऐसी कंप्लेंट आई है जिसे सुनने के बाद ना यही दिमाग में आया कि भाई इस तरह की कंप्लेंट भी हो सकती है। तो देखिए भाई, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है ना, यहाँ पर करीब 3 साल का एक छोटा सा बच्चा चॉकलेट ना मिलने पर ना सीधा पुलिस के पास आ पहुंचा। और बच्चे ने ना पुलिस से अपनी मम्मी की कंप्लेंट करते हुए कहा कि मम्मी ना मेरी चॉकलेट ले लेती है और फिर मुझे मारती भी है, तो पुलिस अंकल आप ना मेरी मम्मी को अरेस्ट कर लो। तो देखिए भाई, ये बच्चे ना वाकई मासूम होते हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, जेन अल्फा जेन बीटा, इनका क्या ही कहना, ये इतना एडवांस सोचते हैं। कभी हमने अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा कि जाकर कंप्लेन कर दे, जबकि मम्मी ने इतना मारा है ना बचपन में। चॉकलेट्स तो मेरी मम्मी मुझे आज भी नहीं खाने देती। तो देखिए, जब पुलिस के पास ये बच्चा पहुंचा ना अपनी कंप्लेन को सीरियसली लिखवाने के लिए, तो पहले पुलिस ने पूरा मामला अच्छे से सुना, फिर पेपर और पेन लेकर ना कंप्लेन लिखने का नाटक भी किया, बिकॉज ये जो बच्चे है ना, ये प्रूफ मांगते हैं। तो देखा, ये बच्चे कुछ भी कर सकते। तो भाई देखिए, अगर आप एज पेरेंट अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं दे रहे ना, तो एक बार सोच लीजिए आपका बच्चा आपकी कंप्लेन ना कर दे। देखिए, ये तो आजकल के बच्चे, लेकिन अगर बात करिए आपके बचपन की, अगर आपको चॉकलेट नहीं मिलती तो क्या आप भी अपने पेरेंट की कंप्लेंट करते, ये मुझे जरूर बताइएगा। और बताने के लिए बताए ना कहाँ जाइए, तो फटाफट से आ जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see bahut sare log social media follow karte hain, bahut sare trends follow karte hain, bahut sare influencers aur celebrities ko follow karte hain aur crash diets karte hain, jo ki unki body ke liye bilkul bhi sehatmand nahi hai. Jo dusre ki body pe suit kar raha hai, wo आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक दे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर

हेलो हेलो जी, तो आ गई मैं फिर से लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। और आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट उन सभी क्रिएटर्स के लिए है जो यूट्यूब से अर्निंग के ड्रीम्स देख रहे हैं। तो भाई देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये अपडेट ना आपका दिल तोड़ने वाली है आज, तो अपने दिल को रखेगा थाम कर, बिकॉज यूट्यूब ने अनाउंस कर दिया है फ्रॉम 1 फरवरी 2027 से। सो भाई जितने भी नए क्रिएटर्स है ना, उनके लिए एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन के लिए एंट्री क्राइटेरिया टफ होने वाला है। तो चलिए फिर अभी का क्राइटेरिया भी जानते हैं। और अभी का एड रेवेन्यू क्राइटेरिया कहता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर के साथ 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स या फिर 90 दिन में 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। तो भाई जो ये न्यू रूल्स आए हैं, ये अपने टारगेट को ना डबल करके आए, यानी कि अब आपको चाहिए 8000 वॉच आवर्स, 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज बस। मुश्किल है आई नो, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आज नहीं तो कभी तो सही। तो देखिए, शुरुआत तो आपको करनी है, और इसी के साथ ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ चेंजेस न्यू क्रिएटर्स के लिए हुए हैं जिनका अकाउंट बनेगा न्यू, और जितने भी पुराने क्रिएटर्स है ना, उनके लिए पुराने रूल्स ही चलेंगे। तो भाई यहाँ पर हुआ है भेदभाव और ये पार्शियलिटी है। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ एक शॉर्ट्स के भरोसे मत बैठिएगा, कंसिस्टेंट कॉन्टेंट और लॉयल ऑडियंस जरूर बनाएगा, और फिर देखिएगा एक दिन आपके वॉच आवर्स, आपके जितना भी क्राइटेरिया ही कम्प्लीट हो जाएगा और आप भी अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर, मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं अपने मूड को थोड़ा सा लाइट, और मूड को लाइट करने के लिए ना बजा देती हूँ एक शानदार सा गाना। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आती हूँ ना थोड़ी देर में।

टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अबीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ हैं अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

हेलो हेलो जी, तो आज का सोशल स्यापा लेकर आ गई और आज का सोशल स्यापा है एकदम फिल्मी। कभी आपने सोचा है कि आप बॉयफ्रेंड रेंट कर सकते हो? तो भाई, जो लोग सिंगल है ना, जिन्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, तो बॉयफ्रेंड रेंट करने वाला ट्रेंड चला था। तो भाई, यहाँ पर हैदराबाद पुलिस ने ना जितने भी लड़कियां, उन्हें वॉर्न कर दिया है रेंट ऑफ बॉयफ्रेंड ऑफर से एकदम सावधान रहिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जितने भी अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर कॉफी डेट, मूवी, शॉपिंग, यहाँ तक कि वेडिंग में पार्टनर बनाने जैसे पैकेजेस ऑफर में आ रहे थे और यहाँ पर लिखा जा रहा था कि रेंट ऑफ बॉयफ्रेंड। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आया जब पुलिस वाले को पता चला कि यहाँ कोई तो गड़बड़ है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल्स हैं ये AI जनरेटेड और इंटरनेट से चोरी हुई वाली प्रोफाइल थी, यानी कि इसके पीछे हो सकते हैं साइबर ठग्स। तो आज की स्टोरी आपको ये बता दी है कि इस तरह के किसी भी स्कैम में मत फंसिएगा। अगर आपको कोई पार्टनर बनाना है तो वर्चुअल वर्ल्ड से नहीं, रियल वर्ल्ड से बनाइए। और अगर आपको कोई कहता है ना कि चलिए बॉयफ्रेंड डेट पर चलकर एक डेट करते हैं, तो भाई उस पैकेज को बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दें और

सारा दिन इंस्टाग्राम पर रहते हैं ना, पूरा दिन सोशल मीडिया चलाते हैं और फिर कहते हैं कि यार बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा खराब हो गया। यहाँ सिर्फ आज मैं बैटरी बैकअप की बात नहीं करूंगी, आज आपको ये भी बताने आई हूँ अगर आप भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना तो हो जाइए थोड़ा सा सावधान, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ना हमें पोस्ट के साथ साथ ना कुछ एड्स भी नजर आते हैं। कुछ एड तो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ना कि हम उन्हें क्लिक करके देखते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपने ये एड क्लिक किया और

इंस्टाग्राम पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट की वजह से एक स्कैम हुआ है 98,000 का। तो भाई देखिए यहाँ पर जो विक्टिम है ना, पहले उनके अकाउंट से 70,000 रुपए डिडक्ट हुए, फिर 20,000 एंड देन 8,000। इस तरह से पूरा टोटल अमाउंट हुआ 98,000। सो इसलिए कहा जाता है कि सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और वर्चुअल वर्ल्ड में दिखने वाली चीजें कभी भी रियल नहीं होती। इसलिए अननोन एड्स पर स्पेशली जो डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड या फिर अर्जेंट ऑफर का लालच आपको देते हैं ना, ऐसी चीजों से दूर रहिए। ऐसे एड्स को कभी भी क्लिक नहीं करना है। अगर गलती से आप कभी किसी ऐसे सस्पिशियस लिंक को क्लिक भी कर देते हैं और फोन आपका हैंग करने लगता है ना, तो आपको पैनिक करने से पहले ना आपको अपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। आपके जितने भी बैंकिंग एक्सेस है सबको सिक्योर कीजिए और साथ ही कंप्लेंट कीजिए साइबर सेल में, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि साइबर सेल में आपको कंप्लेंट करने के लिए 1930 डायल करना है। और हमेशा याद रखिए कि जो इंस्टाग्राम है ना, जो सोशल मीडिया है, वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि हमारे अकाउंट को खाली करने के लिए। तो बस स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

तो चलिए फिर अब वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का। जैसे कि पहले ही कहा था कि वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, तो बात कर लेते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की, जो है फरीदाबाद की पहेली। तो आज मैं एक पहेली लेकर आ गई हूँ। मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ सुबह सुबह लोग वॉक करने आते हैं, शाम को फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं और वीकेंड्स पर मेरी खूबसूरती देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कभी मुझे फरीदाबाद की शान कहा जाता है और जैसे ही लोग मुझे देखते हैं तो नेचर के करीब पहुँच जाते हैं। अब फटाफट से बताइए मैं कौन हूँ, और बताने के लिए आपको पता है ना कहाँ जाना है? जाना है आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना जवाब बताइएगा और देखते हैं कौन फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानता है। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

वहीं बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: करते हो मुझसे? 7 साल लड़के एडजस्ट किया, इसका ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी एडजस्ट कर पाएंगे। शादी के बाद ब्रेकअप नहीं, डिवोर्स होता है। मैं हमेशा तुमसे ब्रेकअप करती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम हमेशा मेरे लिए परफेक्ट थे, शायद मैं ही तुम्हारे लिए गलत।
1: अगर मैं ब्रेकअप करूंगा तो तुम मुझे रोकोगे?
0: तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं?
1: तुम क्या चाहते हो?

0: वो निखिल भागा जा रहा है और तू यहाँ बैठा है।
1: आप शांति से बैठ जाइए ना, वो घूम फिर के इसी मंडप में आ जाएगा। पर वैसे भी इस बला से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, बैठ जाइए।
2: By the way, he is joining the IPS.
1: अभी नहीं, शादी

0: जा रहे हो।
1: मन चला मन चला मन चला मन चला।
2: फिलहाल तो फंसा हूँ।

सेंसेशंस हो रहे हैं, बॉडी में ठंडे ठंडे पानी के फुहारे फूट रहे हैं, साइमल्टेनियसली गरम गरम के फूट रहे हैं। दिस टाइम इट्स रेस टू द पार एंड देन दे गो टू इंफिनिटी।

आज सुबह से मैं एक गाना गा रही हूँ और वो गाना ना कंटिन्यू मेरे दिमाग में एक लूप की तरह चल रहा है, यानी कि वो गाना लगता है मेरे दिमाग में अटक ही गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो देखिए आज यही बताने आपको आ गई हूँ कि कई बार ना हम एक गाना सुनते हैं और वो गाना ना हमारे दिमाग में इस तरह से अटक जाता है जैसे कि हमारे दिमाग में हमारे एक्स की यादें। तो भाई देखिए आखिर ये लूप है क्या, इसे कहते हैं ईयर वॉर्म, यानी कि जब कोई गाना बिना आपकी परमिशन के दिमाग में बार बार प्ले होने लगता है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कैची रिपीटेटिव और फेमिलियर सॉन्ग्स के ईयर वॉर्म बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से एक ही गाना हम बार बार लूप में गा रहे होते हैं। और बताए यहाँ सबसे फनी बात क्या है, यहाँ सबसे फनी बात ये है कि जितना आप खुद को बोलेंगे ना कि मुझे ये गाना नहीं सोचना, उतना ही आपका दिमाग ना उसी गाने को बार बार याद करके गाएगा और बताए फुल एक्साइटमेंट के साथ वो गाना गाया जाता है। अगर आज सुबह से आप भी कोई ऐसा अनोइंग सा सॉन्ग बार बार गा रहे हैं ना आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपका ब्रेन अपना पर्सनल डीजे चला रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि शो पर बनी रहेगा बिकॉज गाने में बेहतरीन बजाती हूँ, तो आज जिस तरह से गाने मैं बजाती हूँ ना उसी तरह से आज आपका दिमाग भी गाने बजा रहा है। और डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी और काम के साथ, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, नहीं तब तक एंजॉय कीजिए वो ट्रैक जो आपके दिमाग में बज रहा है। और इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बहुत सारी मैं बातें यहाँ पर लेकर आती हूँ, लेकिन जब मैं खुशखबरी लेकर आती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। वेलकम टू मेरी महारानी, दिस इज अंजलि और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर अंजलि ऑन एयर। तो भाई फरीदाबाद वालों, आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव अपडेट मैं लेकर आई हूँ, लेकिन अभी इस प्लान में थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये प्लान अगर अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला ना तो फ्यूचर में दिल्ली टू फरीदाबाद के बीच का जो सफर है वो और भी ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो सकता है। तो भाई नमो भारत को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही है एंड ऑफिशियल रूट्स और स्टेशन लोकेशंस पर काम भी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से फरीदाबाद के कई सेक्टरों को बेटर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, यानी कि जितने भी डेली कम्यूटर्स का ट्रेवल टाइम है वो अब कम हो सकता है, खासकर जो लोग डेली फरीदाबाद टू दिल्ली जाते हैं। अब सोचिए अगर आप दिल्ली जा रहे हो ना और मेट्रो से जा रहे हो तो आपको पूरा घूम कर जाना पड़ता है, आपको 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और वहीं सेम अगर आपको गुरुग्राम नोएडा जाने वाला हो ना तो लिटरली इतना टाइम लगता है कि इतने देर में आप ऋषिकेश पहुंच जाए, 6 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी आने जाने में। तो अगर ये कनेक्टिविटी आ गई तो देखिए कितना फास्ट आपका काम हो जाना है, कितना कन्वीनियंट हो जानी है सारी चीजें। तो वही स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ सफर नहीं बल्कि हमारे ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों को भी कम करने में हेल्प करता है। तो ये थी फरीदाबाद की आज अच्छी खबर और ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगी, लेके तब तक के लिए इंतजार कीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक का।

0: हेलो हेलो जी, फिर से लौट आई हूँ मैं और अब बातें नहीं करने वाली है। अब मैं ना पहेली का जवाब जानने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक पहेली पूछी थी और पहेली थी फरीदाबाद की ऐसी कौन सी जगह है जिसे हर कोई पसंद करता है। तो अब वक्त हो गया है हमारे फरीदाबाद की पहेली का जवाब जानने का, लेकिन उससे पहले ना मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे सभी लिसनर्स का, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे जवाब आए हैं और बहुत सारे जवाब सही भी हैं। लेकिन जो जवाब सबसे पहले आया, बात करते हैं उनकी। चलिए पहले सुनते हैं कि इस पहेली का आखिर जवाब क्या है।
1: हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम पलक है। अभी तुमने जो पहेली पूछी थी वो तो फरीदाबाद की बहुत फेमस जगह है। वहां तो मैं ना अपने बचपन से जाती आ रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ ना अलग ही वाइब है उस जगह की। तो यार वो जगह है फरीदाबाद की बड़कल झील। थैंक यू।
0: थैंक यू पलक, बहुत अच्छे से फरीदाबाद को जानते हो। और जैसे कि आपने बताया ना कि आपका बचपन बीता है यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से आपने बचपन यहाँ पर बिताया है ना, ऐसे ही पूरी जिंदगी आप इस फरीदाबाद की जगह से जुड़े रहे और साथ ही एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ मी टाइम यहाँ पर। और इसी के साथ ही आपका आंसर एकदम सही था। ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितने अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिन्होंने आज अपना आंसर मिस कर दिया है, टेंशन मत लीजिए, कल फिर से लौटूंगे एक और नई पहेली के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो

बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं लगता, वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले।

आपने हमेशा फीवर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने ट्रैक फीवर के बारे में सुना है? ये कैसे सुनोगे जब घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, कभी ट्रैक ही नहीं करोगे, कभी ट्रिप ही नहीं करोगे। तो देखिए भाई, ट्रैक फीवर लेकर आ गई हूँ। और ट्रैक फीवर ना खास करके आप, ट्रैक फीवर सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो ट्रैकिंग से वापस आते हैं, और ट्रैकिंग से वापस आने के बाद ना उन्हें हल्का सा फीवर, बॉडी एक और साथ ही हेडेक या फिर गले में दर्द जैसी चीजें होने लगती है। तो ये पूरी तरह से कॉमन है और कॉमनली कहा जाता है इसे ट्रैक फीवर। और जो रिसेंट स्टडी में ये बताया गया कि ट्रैकिंग के बाद बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ स्लीप एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से ना टेम्परेरी वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? अगर आपको ट्रैक से पहले कोई फीवर आ रहा है ना, तो वो फीवर नॉर्मल नहीं है। उस फीवर के साथ आप कभी भी ट्रैक करने मत जाएगा, हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर हो सकता है कोई एल्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम हो। सो इन चीजों का ख्याल रखिए जब भी ट्रैक के लिए जा रहे हैं, हेल्दी होकर जाइए ताकि आप ज्यादा फन कर सके, ताकि आप ज्यादा मेमोरीज कलेक्ट कर सके। और जैसे ही ट्रैक खत्म करके अगर वापस घर आ रहे हैं और फीवर हो भी जाता है, तो प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा, हाइड्रेशन का ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशियस फूड लीजिएगा और साथ ही लीजिएगा प्रॉपर स्लीप, दैट्स इट। देखिए ये सारी चीजें जो आपके फीवर को खत्म कर देंगे। और अगर तब भी फीवर खत्म नहीं होता ना, तो आपको पता है ना कहाँ जाना है, तो जाइएगा अपने डॉक्टर के पास। ये कुछ चीजें जिनका ख्याल रखिएगा। और आज के फिटनेस वाले फंडे में बस यही लेकर आई थी। फिर से मिलूंगी लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

और बस उसी के साथ आज कंचली ऑन एयर यहीं तक था। बहुत सारी बातें की मैंने आज आपसे, बहुत सारी चीजें जानी और बहुत कुछ बताया भी। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैं टिफिन में क्या लेकर आई हूँ। बिकॉज जब मैं ऑफिस आती हूँ ना, तो मेरा पहला सवाल अपने कलीग्स के साथ यही होता है कि भाई आज क्या लेकर आए हो टिफिन में। और जैसे मुझे पता चलता है ना कि टिफिन में कुछ टेस्टी आया, तो मैं खा जाती हूँ उनका सारा टिफिन। कह रहे आज अपने टिफिन की मैं बात करूँ ना, तो आज मेरे टिफिन में है सैंडविच और कोल्ड कॉफी। अब आप बोलोगे कि क्या यार अंजलि, हमें तो फिटनेस वाला फंडा देकर जाती है और खुद सैंडविच खाती हो। तो भाई देखिए, मेरा सैंडविच बड़ा ही हेल्दी है, ब्राउन ब्रेड लेकर आई हूँ, उसके साथ में मैं वेजीज वेज सैंडविच लेकर आई हूँ। अगर कोल्ड कॉफी की मैं बात करूँ ना, तो आलमंड मिल्क में है मेरी कोल्ड कॉफी। देखा कितना हेल्दी और टेस्टी सा लंच लेकर आई हूँ मैं। खैर आप क्या लेकर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा। और पता है ना बताने के लिए कहाँ जाना है? जाना है आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर वॉइस मैसेज भेजना है और साथ ही एंजॉय करना है रेडियो महारानी पर शो को। और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर, जहां सिनेमा के गलियारे में बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन से नए गाने रिलीज होने को है तैयार और कुछ कहानियां जो कि इस वीकेंड पर रिलीज होने जा रही हैं सिल्वर स्क्रीन पर। कुछ नई कहानियां सिल्वर स्क्रीन पर होंगी आउट तो कुछ होंगी स्ट्रीम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और बताऊं कहीं है रोमांटिक तड़का तो कहीं होगा हॉरर थ्रिल और एक्शन का धमाल, वहीं साउथ इंडस्ट्री से लेकर के पंजाबी इंडस्ट्री के गाने तो कहीं होगा हॉलीवुड का सस्पेंस और थ्रिल का डबल डोज। कुछ नई डायरेक्टोरियल जब भी होने वाले हैं तो कुछ नई जोड़ियां आने वाली हैं सिल्वर स्क्रीन पर। ये सारी चर्चाएं सिनेमा के गलियारे से लेकर के आया हूं, लेकिन ये पिटारा खोलने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना फ्रॉम द मूवी रावड़ी राठौर और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। यह अब हम बात कर रहे हैं देविका पादुकोण के बारे में, जहां पर अपना अगला प्रोजेक्ट डायरेक्टर अटली के साथ बहुत जल्द लेकर के आ रही हैं और लगभग उनकी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अपनी शूटिंग के बाद मैटरनिटी ब्रेक पर भी जाने वाली है दीपिका। उनका एक फोकस था कि इस मैटरनिटी ब्रेक से पहले अपना स्केड्यूल जो है पूरा कंप्लीट कर लें ताकि मूवी की रिलीजिंग लेट ना हो। यहाँ बात की जाए तो अब अटली के साथ अपनी पूरी कहानी का लगभग शूट कंप्लीट कर चुकी हैं ये, और अगले स्टेप की अगर बात की जाए तो अब बाकी जो शूट है उसको कंप्लीट करके इसको 2027 में स्टार्टिंग और मिड में रिलीज किया जा सकता है। कहानी है राका और बड़े बजट की स्काई फैंटेसी एक्शन पैन इंडिया फिल्म होने वाली जो दो पार्ट्स में रिलीज की जा सकती है ऐसा कहा जा रहा। लीड में अल्लू अर्जुन है और अपोजिट है दीपिका। देखते हैं ये कहानी क्या धमाल मचाएगी। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कहा जा रहा है कि लगभग कास्ट ये ही रहने वाली, शायद एक दो कैरेक्टर्स ऐड ऑन किए जा सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बट कास्ट यही रही। इंतजार रहेगा इसकी रिलीजिंग का भी, बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है, बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

सुबह से मैं एक गाना गा रही हूँ और वो गाना ना कंटिन्यू मेरे दिमाग में एक लूप की तरह चल रहा है, यानी कि वो गाना लगता है मेरे दिमाग में अटक ही गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो देखिए आज यही बताने आपको आ गई हूँ कि कई बार ना हम एक गाना सुनते हैं और वो गाना ना हमारे दिमाग में इस तरह से अटक जाता है जैसे कि हमारे दिमाग में हमारे एक्स की याद है। तो भाई देखिए आखिर ये लूप है क्या, इसे कहते हैं ईयर वॉर्म, यानी कि जब कोई गाना बिना आपकी परमिशन के दिमाग में बार बार प्ले होने लगता है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कैची रिपीटेटिव और फेमिलियर सॉन्ग्स के ईयर वॉर्म बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से एक ही गाना हम बार बार लूप में गा रही होता है। और पता है यहाँ सबसे फनी बात क्या है, यहाँ सबसे फनी बात ये है कि जितना आप खुद को बोलेंगे ना कि मुझे ये गाना नहीं सोचना, उतना ही आपका दिमाग ना उसी गाने को बार बार याद करके गाएगा और पता है फुल एक्साइटमेंट के साथ वो गाना गाया जाता है। अगर आज सुबह से आप भी कोई ऐसा अनोइंग सा सॉन्ग बार बार गा रहे हैं ना, आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो एक कांग्रेचुलेशंस बिकॉज आपका ब्रेन अपना पर्सनल डीजे चला रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि शो पर बनी रहेगा बिकॉज गाने में बेहतरीन बजाती हूँ, तो आज जिस तरह से गाने मैं बजाती हूँ ना उसी तरह से आज आपका दिमाग भी गाने बजा रहा है। और डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी और काम के साथ, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, नहीं तब तक एंजॉय कीजिए वो ट्रैक जो आपके दिमाग में बज रहा है। और इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। बेस्ट ऑफ अंजलि।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्म ही फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं अजय देवगन के बारे में, जहाँ किरदारियों में बेहतरीन किरदार निभाते तो नजर आती हैं और अब टीवी स्क्रीन पर भी दिखने वाले हैं। क्राइम पेट्रोल के साल के सीजन नए सीजन में अनूप सोनी की जगह अजय देवगन दिखाई देने वाले। लगभग 15 एपिसोड्स की शूटिंग कंप्लीट भी की जा चुकी है। 31 अगस्त को पहला एपिसोड रिलीज होने जा रहा है जहां अजय देवगन होस्ट होंगे। आगे की रणनीति टीआरपी ऑडियंस रिस्पांस पर होने वाली है, जहां इनके को होस्ट होने वाले हैं राजेश तैलांग को भी शामिल किया, उनका हिस्सा भी रिस्पांस के हिसाब से तय होगा। अनूप सोनी का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं है, वो शाम के साथ अपने लंबे समर को लेकर पॉजिटिव हैं। और अब अजय देवगन का ये डेब्यू टीवी स्क्रीन पर जो देखने को मिलने वाला है, हमें क्राइम पेट्रोल में देखते हैं क्या धमाल होने वाला है इनके होस्टिंग के साथ। बाकी ऐसी भी चर्चाएं तो होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। बात करते हैं अब हम फिर से टीवी स्क्रीन की, लेकिन इस बार टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा देखने वाला है वो इंडिया के एक बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं। टीवी एंटरटेनमेंट डेब्यू करने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर दिखेंगे रोहित शर्मा। शो का नाम ही होने वाला है द रोहित शर्मा शो। बात करें यहाँ पे फॉर्मेट और एग्जैक्ट की शो में होने क्या वाला है और उसकी प्रीमियर डेट क्या होने वाली है, तो यहाँ पर सितंबर 2026 में ही शो को प्रीमियर किया जाने वाला है। प्रोमो और लिस्टिंग में रियलिटी टैग दिखाता है, कंटेंट स्ट्रक्चर पर अभी पर्दा नहीं उड़ाया। जहां से इतना बात सामने आया कि रोहित क्रू को डायरेक्शन देते नजर आ रहे हैं मजाकिया अंदाज में। स्टेज तैयार कैमरा तैयार वाली लाइन पर सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ते नजर आ रहा है कि ये हिटमैन का नया अवतार सितंबर में क्या होने वाला है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी भी चर्चा में करता रहूंगा। उससे पहले एक और ट्रैक।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्म नई फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं इमरान हाशमी के बारे में, जिन्होंने ये चर्चाओं जो चलती नजर आई थी कि आरडी बर्मन साहब की बायोपिक में महमूद का किरदार निभा सकते हैं इमरान, लेकिन इस बात के ऊपर विराम लगाते हुए इमरान ने खुद कन्फर्म किया कि वो किरदार नहीं निभा रहे हैं। ये बातें सिर्फ एक अफवाह थी जो सोशल मीडिया पर चलती नजर आई थी। उनका कहना है कि इवन अप्रोच भी नहीं किया गया था इस किरदार के लिए, शायद कुछ ना कहीं बातें यूं ही सोशल मीडिया पर आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करें यहाँ पे तो नीरज पांडे और अफरान अख्तर से जुड़ी आरडी बर्मन साहब की बायोपिक में महमूद के रोल को लेकर के चर्चाएं चलती नजर आई थी, जहां कहीं ना कहीं बीच में एक नाम आ गया जो कि फाइनल नहीं था। कहा यह भी जा रहा है कि अक्षय कुमार के राजेश खन्ना के रोल में होने की चर्चा भी है, लेकिन अभी इसको फाइनल अनाउंसमेंट नहीं की गई। और यहाँ अगर बात करें, इस वक्त इमरान सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाते जरूर नजर आ रहे हैं अपने रोमांचक और कुछ एक्शन से भरपूर किरदार के साथ। बाकी ऐसी भी चर्चाएं तो होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे पूर्व सिंह कर की। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

नेहा कक्कड़ और रोनप्रीत की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना और शो चल रहा फुल में फ्लेवर। बात करेंगे अब हम एक और बढ़िया कहानी की। स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा, जिसकी शूटिंग स्टार्ट की जा चुकी है। ये बात की जाए तो एक्सक्लूसिव ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाने वाला है गाइस कहानी को। सीरीज सुब्रत रॉय यानी कि एक ग्रुप के रॉक्स जो हर चीज सफर को दिखाएगा, जहाँ छोटी बचत योजनाओं से शुरू होकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य, फिर बढ़ता प्रभाव, एक प्लान बनता नजर आ। बात करें यहाँ पे तमाल बंदोपाध्याय की किताब सारा द अनटोल्ड स्टोरी के आधार पर इस कहानी को बनाया जा रहा है, जहाँ लीड किरदार में सिद्धार्थ हमें नजर आने वाले, सपोर्टिंग में कृतिका सिंह, मोहन बनर्जी और आदित्य श्रीवास्तव भी होंगे। डायरेक्टर होने वाले इस कहानी के हंसल मेहता, नेशनल अवार्ड विनर जो स्कैम 1992 और स्कैम 2003 के बाद फिर लौट रहे हैं। तो ये कहानियों से भी फैंस को उतनी ही उम्मीदें हैं जहाँ पहले स्कैम्स रिलेटेड जो स्टोरीज बनाई गई थी। रहेगा इंतजार, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक ऑर्डर,

आज सुबह से मैं एक गाना गा रही हूँ और वो गाना ना कंटिन्यू मेरे दिमाग में एक लूप की तरह चल रहा है, यानी कि वो गाना लगता है मेरे दिमाग में अटक ही गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो देखिए आज यही बताने आपको आ गई हूँ कि कई बार ना हम एक गाना सुनते हैं और वो गाना ना हमारे दिमाग में इस तरह से अटक जाता है जैसे कि हमारे दिमाग में हमारे एक्स की यादें। तो भाई देखिए आखिर ये लूप है क्या, इसे कहते हैं ईयर वॉर्म, यानी कि जब कोई गाना बिना आपकी परमिशन के दिमाग में बार बार प्ले होने लगता है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कैची रिपीटेटिव और फेमिलियर सॉन्ग्स के ईयर वॉर्म बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से एक ही गाना हम बार बार लूप में गा रहे होते हैं। और पता है यहाँ सबसे फनी बात क्या है, यहाँ सबसे फनी बात ये है कि जितना आप खुद को बोलेंगे ना कि मुझे ये गाना नहीं सोचना, उतना ही आपका दिमाग ना उसी गाने को बार बार याद करके गाएगा और पता है फुल एक्साइटमेंट के साथ वो गाना गाया जाता है। अगर आज सुबह से आप भी कोई ऐसा अनोइंग सा सॉन्ग बार बार गा रहे हैं ना आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आपका ब्रेन अपना पर्सनल डीजे चला रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि शोबर बनी रहेगा बिकॉज गाने में बेहतरीन बजाती हूँ, तो आज जिस तरह से गाने मैं बजाती हूँ ना उसी तरह से आज आपका दिमाग भी गाने बजा रहा है। और डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी और काम के साथ, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, तब तक एंजॉय कीजिए वो ट्रैक जो आपके दिमाग में बज रहा है। और इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड
5: ओनली विद आरजे मॉर्निंग फिल्मी फ्लेवर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे शो में, यानी कि फिल्म में फॉरएवर। यहाँ हम बात करते हैं आज सिनेमा के कैलेंडर में बर्थडे है आज उस एक्ट्रेस का जिसने हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। सिंपल स्माइल, ग्रेसफुल पर्सनालिटी और नेचुरल एक्टिंग ने अपने करियर में ग्लैमर से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस। बात कर रहा हूँ आज उस टैलेंटेड एक्ट्रेस का जिनका नाम है भूमिका चावला। भूमिका चावला की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस रही अपने हिंदी सिनेमा में एक किरदार जो था तेरे नाम में। इनके बारे में बहुत सी चर्चाएं आज मैं करने वाला हूँ, लेकिन सुनाऊंगा उससे पहले कुछ खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्म ही फ्लेवर सिनेमा के गलियारे से यानी कि सिनेमा के कैलेंडर में आज बात कर रहे हैं भूमिका चावला की, जहां भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट से की और फिर साउथ इंडियन सिनेमा का रुख किया। सन 2000 में तेलुगु फिल्म युवकादु से ही उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद खुशी जैसी फिल्मों ने उन्हें साउथ सिनेमा में बड़ी पहचान दिलाई। बस फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, करियर का सबसे बड़ा बॉलीवुड ब्रेक थ्रू आया सुपरस्टार यानी भाईजान के साथ, जहां कहानी का नाम था तेरे नाम, जहां निर्जला के रोल में भूमिका को पूरे देश में घर घर तक पहुंचा दिया। तेरे नाम में भूमिका चावला का निर्जला वाला किरदार आज भी ऑडियंस के दिल में बसा हुआ। एक सिंपल अनुसंच इमोशनली स्ट्रांग लड़की के करेक्टर को उन्होंने इतनी नेचुरल सेंसिटिविटी के साथ निभाया कि फिल्म की इमोशनल इम्पैक्ट और भी गहरी हो गई। तेरे नाम के साथ उन्होंने रन गांधी माय फादर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी किरदार निभाया, जहां पर बेहतरीन प्यार बटोरती नजर आई। उनके बारे में ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत से गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: अरे अरे ए ए

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ वफाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: 47 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। ये हम बात करते हैं भूमिका चावला की, जो उनकी जर्नी का सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने एक ही इंडस्ट्री तक खुद को लिमिटेड नहीं रखा। हिंदी सिनेमा के साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्म में भी उन्होंने काम किया। टेलीविजन और ओटीटी प्रोजेक्ट में भी उनकी प्रेजेंस देखने को मिली। रिलायंस फैंस के लिए भूमिका का नाम आज भी सबसे पहले निर्जला के करेक्टर के साथ जुड़ा हुआ। वो मासूम मुस्कान, सिंप्लिसिटी और तेरे नाम की वो इमोशनल लव स्टोरी। तो फिर से हैप्पी वाला बर्थडे है उनको, जो एक रोल जो सालों बाद भी याद रहे वही एक्टर की असली पहचान होती है। भूमिका चावला की भी कुछ ऐसा ही किरदार। ऐसे और भी चर्चाएं होती रहेंगी लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन सेम टाइम सेम जगह। रेडियो महारानी।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: आज सुबह से मैं एक गाना गा रही हूँ और वो गाना ना कंटिन्यू मेरे दिमाग में एक लूप की तरह चल रहा है, यानी कि वो गाना लगता है मेरे दिमाग में अटक ही गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो देखिए आज यही बताने आपको आ गई हूँ कि कई बार ना हम एक गाना सुनते हैं और वो गाना ना हमारे दिमाग में इस तरह से अटक जाता है जैसे कि हमारे दिमाग में हमारे एक्स की यादें। तो भाई देखिए आखिर ये लूप है क्या, इसे कहते हैं ईयर वॉर्म, यानी कि जब कोई गाना बिना आपकी परमिशन के दिमाग में बार बार प्ले होने लगता है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कैची रिपीटेटिव और फेमिलियर सॉन्ग्स के ईयर वॉर्म बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से एक ही गाना हम बार बार लूप में गा रहे होते हैं। और पता है यहाँ सबसे फनी बात क्या है, यहाँ सबसे फनी बात ये है कि जितना आप खुद को बोलेंगे ना कि मुझे ये गाना नहीं सोचना, उतना ही आपका दिमाग ना उसी गाने को बार बार याद करके गाएगा और पता है फुल एक्साइटमेंट के साथ वो गाना गाया जाता है। अगर आज सुबह से आप भी कोई अनोइंग सा सॉन्ग बार बार गा रहे हैं ना आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो एक कांग्रेचुलेशंस बिकॉज आपका ब्रेन अपना पर्सनल डीजे चला रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि शो पर बनी रहिएगा बिकॉज गाने में बेहतरीन बजाती हूँ, तो आज जिस तरह से गाने मैं बजाती हूँ ना उसी तरह से आज आपका दिमाग भी गाने बजा रहा है। और डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी और काम के साथ, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, तब तक एंजॉय कीजिए वो ट्रैक जो आपके दिमाग में बज रहा है। और इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। Best of Anjali.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी कभी ना मूड ठीक करने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए होती, बस एक अच्छा गाना, एक फनी कॉन्वर्सेशन और थोड़ा सा वक्त अपने लिए काफी होता है। और बस इसीलिए तो मैं आपके पास रोज आती हूँ आपका मूड हल्का करने। फिर से घड़ी ने बजा दिए हैं दो और शुरू हो चुका है आपका द हैप्पी आवर्स। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो महारानी। और अगले दो घंटे में बातें होंगी उन सब चीजों की जो आपकी डेली लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। जेंजी के नए नए वर्ड्स, इंटरनेट के ट्रेंडिंग मीम्स, बॉलीवुड की गॉसिप और अपडेट्स, फैशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स और अपने फरीदाबाद की कुछ इंटरेस्टिंग जगह और स्टोरीज भी। मतलब आपके साथ बैठकर एक प्रॉपर गपशप होती है। बस फर्क इतना है कि मैं रेडियो में बैठकर चाय पी रही हूँ और आप ऑफिस या घर में। तो अब मूड को थोड़ा हल्का कीजिए क्योंकि शुरू हो चुका है द हैप्पी आवर्स। चलिए एक गाना हो जाए और गाने के बाद बताऊंगी कि आज जेंजी की डिक्शनरी में कौन सा नया वर्ड ऐड हुआ है। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

कभी किसी को देखा है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे जितनी भी सीरियस सिचुएशन हो, उसके फेस पे ना एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता, बस वही होता है नॉनचलांट। जी हाँ, आज के जेंजी डिक्शनरी में वर्ड है नॉनचलांट। और अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बिना ज्यादा टेंशन लिए बिल्कुल चिल और अनबॉर्डर्ड रहना। एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हो और सामने वाला पर्सन आपके पास आकर आपसे ढेर सारी बातें कर रहा है, लेकिन आपको उसकी बातों से और उस पर्सन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उसकी बातें ही नहीं सुन रहे। इसी को कहते हैं नॉनचलांट, कि सामने वाला कितना भी कुछ भी बोल ले, आपको उसकी बातों से और उस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, नॉनचलांट होना और केयरलेस होना सेम चीज नहीं है। कभी कभी ना बस इमोशंस को अननेसेसरली ओवर रिएक्ट ना करना भी एक स्किल है। तो आज का जेंजी वर्ड याद रखिएगा, नॉनचलांट। और अब बात करते हैं इंटरनेट की, जहां लोग नॉनचलांट रहना चाहते हैं लेकिन मीम्स देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आज कौन सी ट्रेंडिंग मीम मुझे देखने को मिली, बताऊंगी इसके बारे में थोड़ी देर में। तब तक के लिए ये गाना सिर्फ आपके लिए।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू
0: डॉक्टर।

भाई रवि किशन को इंटरनेट ने एक्टर से ना मीम मटेरियल बना दिया है, और सच बताऊं तो उनके पुराने इंटरव्यूज से मीम का स्टॉक खत्म ही नहीं हो रहा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर रवि किशन का ना एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है, जहां उनसे पूछा गया था कि फेम और मनी में से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो उनका जवाब कुछ ऐसे था कि पहचान, मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज, नाम या दाम, नाम दाम तो दौड़ कर आएगा। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने इस डायलॉग को पकड़ा और बना दिया मनी फॉलोज माय ब्रदर वाला मीम। और सबसे फनी बात यह है कि रवि किशन को ना नया मीम बनने के लिए ना कुछ करना ही नहीं पड़ता, इंटरनेट उनके पुराने इंटरव्यूज खोद कर कॉन्टेंट निकाल लेता है। मतलब भाई कॉन्टेंट क्रिएटर कोई भी हो, रवि किशन के पुराने इंटरव्यूज एवरग्रीन है। और वैसे भी मीम्स की दुनिया में एक चीज तो पक्की है, आज का सीरियस डायलॉग भी ना कल का वायरल मीम बन सकता है। लेकिन मीम से थोड़ा सीरियस होते हैं, क्योंकि अब वक्त हो गया है उन लोगों का जो हम पर बुरी नजर गड़ाए बैठे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वही चार लोग। अब ये चार लोग क्या कहते हैं, बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में। तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

अब रवि किशन जी ने कहा था कि मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज, तो मैंने सोचा हमारे यहाँ तो मनी से पहले रिश्तेदार फॉलो करते हैं। वो कहते हैं ना, रिश्तेदार या बुरी नजर, रिश्तेदार, बुरी नजर फॉलोज माई ब्रदर, बुरी नजर फॉलोज, खुशियाँ या बुरी नजर, खुशियाँ, बुरी नजर दौड़ कर आएगी, खोजेगी आपकी खुशियों को, खोजेगी। क्योंकि होता है ना कि आपने नई गाड़ी ली, बुरी नजर, नया घर लिया, बुरी नजर, कहीं घूमने चले गए, वाह बहुत अच्छा, और अंदर से बुरी नजर दौड़ कर आती है आपके पीछे रिश्तेदारों की। और सबसे फनी बात ये है कि ये चार लोग ना आपकी खुशी से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आपकी खुशी कितनी बड़ी है। लेकिन सच बताऊं, हर बार ना लोगों की नजर से डरने के बजाय अपनी खुशी एंजॉय करनी चाहिए। आप खुश हैं, आपने मेहनत की है, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। बस चार लोग क्या कहेंगे, किसकी नजर लगेगी, ये सोच सोच करना अपनी खुशी को छोटा मत कीजिए। आपकी लाइफ है, खुशी भी आपकी है, सेलिब्रेशन भी आपका है। और अब इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलते हैं पॉपकॉर्न अपडेट की तरफ। बॉलीवुड में क्या नया पक रहा है बताऊंगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए ये गाना सिर्फ आपके लिए।

पतंजलि। आज सुबह से मैं एक गाना गा रही हूँ और वो गाना ना कंटिन्यू मेरे दिमाग में एक लूप की तरह चल रहा है, यानी कि वो गाना लगता है मेरे दिमाग में अटक ही गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो देखिए आज यही बताने आपको आ गई हूँ कि कई बार ना हम एक गाना सुनते हैं और वो गाना ना हमारे दिमाग में इस तरह से अटक जाता है जैसे कि हमारे दिमाग में हमारे एक्स की यादें। तो भाई देखिए, आखिर ये लूप है क्या, इसे क्या कहते हैं ईयर वॉर्म, यानी कि जब कोई गाना बिना आपकी परमिशन के दिमाग में बार बार प्ले होने लगता है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कैची, रिपीटेटिव और फेमिलियर सॉन्ग्स के ईयर वॉर्म बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से एक ही गाना हम बार बार लूप में गा रहे होते हैं। और पता है यहाँ सबसे फनी बात क्या है, यहाँ सबसे फनी बात ये है कि जितना आप खुद को बोलेंगे ना कि मुझे ये गाना नहीं सोचना, उतना ही आपका दिमाग ना उसी गाने को बार बार याद करके गाएगा और पता है फुल एक्साइटमेंट के साथ वो गाना गाया जाता है। अगर आज सुबह से आप भी कोई ऐसा अनोइंग सा सॉन्ग बार बार गा रहे हैं ना आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपका ब्रेन अपना पर्सनल डीजे चला रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि शोबर बनी रहेगा बिकॉज गाने में बेहतरीन बजाती हूँ, तो आज जिस तरह से गाने मैं बजाती हूँ ना उसी तरह से आज आपका दिमाग भी गाने बजा रहा है। और डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी और काम के साथ, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, नहीं तब तक एंजॉय कीजिए वो ट्रैक जो आपके दिमाग में बज रहा है। और इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: बर्ड्स।
1: रवि किशन का भोकाल और मिर्जापुर की तबाही, भाई ये कॉम्बिनेशन थिएटर में आने वाला है और इंटरनेट ऑलरेडी एक्साइटेड है। हाल ही में मिर्जापुर मूवी का ट्रेलर सामने आया और रवि किशन का लुक देखकर एक चीज तो क्लियर हो गई कि बब्बन बबुआ जो हैं भाई वो भोकाल बनाने के पूरे मूड में हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये लुक और रवि किशन का भोकाल और मिर्जापुर की तबाही वाला कैप्शन काफी ट्रेंड कर रहा है। और अगर आप मिर्जापुर के फैन हैं तो कैलेंडर में ना डेट मार्क कर लीजिए, 4th सितंबर 2026 मिर्जापुर पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि रवि किशन का ये भोकाल देखने के लिए कितने लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पसंद करेंगे। और अब मिर्जापुर का नाम आ ही गया है तो थोड़ा भोकाल तो बनता है। एक गाना हो जाए, मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: लवर्स।
1: अच्छा, हम लड़कियों को ना इंडियन वियर का एक अलग ही शौक होता है। एक अच्छा कुर्ता दिखा नहीं कि मन करता है कि इसको ले ही लो और झुमके। ये तो भाई हर ड्रेस के साथ ना अलग अलग चाहिए होते हैं, जूती अलग चाहिए होती हैं, और फिर भी वार्डरोब खोल के लगता है कि कपड़े तो बहुत हैं पर पहने क्या। अगर आपके साथ भी एग्जैक्टली यही होता है तो आज का स्टाइल स्टूडियो आपके काम का है। आज मैं बताऊंगी कि इंडियन वियर के वो एसेंशियल्स तो एक्चुअली आपकी वार्डरोब में ना होने चाहिए। सबसे पहले एक अच्छी स्ट्रेट वाइट पैंट ऑलमोस्ट हर कुर्ते के साथ चल जाएगी, और दूसरा एक न्यूट्रल दुपट्टा जो डिफरेंट कलर्स और आउटफिट के साथ इजीली पेयर हो सके। थर्ड वन है कि एक वर्सेटाइल कुर्ता जिसे आप सिंपल रखो तो कैजुअल और एक्सेसरीज के साथ ड्रेसअप करो तो फेस्टिव लुक दे। फोर्थ वन इज अ कम्फर्टेबल पेयर ऑफ जूतीज जो एथनिक के साथ साथ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स पर भी काम आ जाए। और लास्ट वन इज एक ऐसी ज्वेलरी जो मल्टीपल आउटफिट्स के साथ पेयर हो सके, क्योंकि एक अच्छे झुमके का पावर अंडर एस्टिमेट मत करना भाई। तो मेन पॉइंट ये है कि इंडियन वेयर वार्डरोब भरने के लिए ना ज्यादा कपड़े नहीं राइट बेसिक्स चाहिए होते हैं। फिर कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि कपड़े तो बहुत हैं पर कुछ एक साथ वर्क नहीं करता। और अब वार्डरोब से निकलते हैं अपने फरीदाबाद की तरफ, देखते हैं फरीदाबाद लोकल वर्ज में आज क्या नया है। लेकिन इस गाने के बाद स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

फरीदाबाद वालों, वीकेंड आ गया है और अगर आपका प्लान अभी भी वही घर पे देखते हैं क्या करने वाला है, तो एक प्लान मैं सजेस्ट कर देती हूँ। 23 अगस्त यानी कि संडे को मंगलम गार्डन बाटा चौक में एक फेस्टिव एग्जीबिशन होने वाली है और ऑनेस्टली फेस्टिव शॉपिंग के नाम पे ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। राखी, जन्माष्टमी और गणपति, मतलब तीन फेस्टिवल की वाइब एक ही जगह मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी हैंडमेड राखी, फेस्टिव डेकोर, ज्वेलरी, बैग्स, एक्सेसरीज, होम डेकोर और गिफ्टिंग ऑप्शंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको मिलेगा लाइव म्यूजिक, फन एक्टिविटीज, फोटो स्पॉट्स और सबसे अच्छी बात, आर्टिशियन से डायरेक्टली मिलने का मौका। तो अगर आपको भी फेस्टिवल्स के टाइम मार्केट की भीड़ में घूमने के बजाय थोड़ा क्यूट सा एक्सप्लोर शॉपिंग और फेस्टिव वाइब चाहिए, तो आप यहाँ जरूर जा सकते हैं। और वैसे भी फेस्टिवल की शॉपिंग तभी कंप्लीट होती है जब आप इस मूड से निकले हो कि बस देखकर आते हैं कैसा है और वापस आते टाइम हाथ में हो आपके बहुत सारे शॉपिंग बैग्स। चलिए, वक्त हो गया है गाने का, गाने के बाद मिलते हैं शटर डाउन में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

happened to you was actually the best thing that happened for you. क्योंकि कभी कभी ना जो चीज उस वक्त हमें तोड़ देती है वही बाद में समझ आती है कि शायद हमारा टूटना जरूरी था. अगर कोई इंसान लाइफ से चला जाता है तो शायद आप खुद के उतना ही करीब आ जाते हो. कोई अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो शायद कोई बेटर रास्ता खुल जाता है. कोई प्लान फेल होता है तो शायद लाइफ का प्लान कुछ और होता है. और हर चीज का रीजन हमें उस वक्त समझ नहीं आता. कुछ चीजें टाइम के साथ सेंस बनाती हैं. तो अगर आज कुछ ऐसा है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों, तो मे बी कल आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे अच्छा हुआ उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा हुआ. वो कहते हैं ना, अगर आप बेहतर की तलाश में रहोगे तो बेहतरीन को नहीं ढूंढ पाओगे. इसलिए बेहतर को बेहतरीन बनाने का जो सफर है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए. इसी थॉट के साथ आज का द हैप्पी आवर्स को करते हैं शट डाउन. मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे 89.6 रेडियो महारानी. हंसते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.

सुबह से मैं एक गाना गा रही हूँ और वो गाना ना कंटिन्यू मेरे दिमाग में एक लूप की तरह चल रहा है, यानी कि वो गाना लगता है मेरे दिमाग में अटक ही गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो देखिए आज यही बताने आपको आ गई हूँ। कई बार ना हम एक गाना सुनते हैं और वो गाना ना हमारे दिमाग में इस तरह से अटक जाता है जैसे कि हमारे दिमाग में हमारे एक्स की यादें। तो भाई देखिए आखिर ये लूप है क्या, इसे कहते हैं ईयर वॉर्म। यानी कि जब कोई गाना बिना आपकी परमिशन के दिमाग में बार बार प्ले होने लगता है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कैची रिपीटेटिव और फेमिलियर सॉन्ग्स के ईयर वॉर्म बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से एक ही गाना हम बार बार लूप में गा रहे होते हैं। और पता है यहाँ सबसे फनी बात क्या है, यहाँ सबसे फनी बात ये है कि जितना आप खुद को बोलेंगे ना कि मुझे ये गाना नहीं सोचना, उतना ही आपका दिमाग ना उसी गाने को बार बार याद करके गाएगा। और पता है फुल एक्साइटमेंट के साथ वो गाना गाया जाता है। अगर आज सुबह से आप भी कोई ऐसा अनोइंग सा सॉन्ग बार बार गा रहे हैं ना, आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपका ब्रेन अपना पर्सनल डीजे चला रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि शो पर बनी रहिएगा बिकॉज गाने में बेहतरीन बजाती हूँ, तो आज जिस तरह से गाने मैं बजाती हूँ ना उसी तरह से आज आपका दिमाग भी गाने बजा रहा है। और डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी और काम के साथ, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक। नहीं, तब तक एंजॉय कीजिए वो ट्रैक जो आपके दिमाग में बज रहा है। और इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम.

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक है।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हक
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

एक बात मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ और वो दिल से पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली में सवाल ये है कि क्या आप लोगों से सुबह सुबह जल्दी उठा जाता है, चाहे मंडे की सुबह हो चाहे फिर वो संडे की सुबह हो, जल्दी उठने में इतना आलस आता है। फिर उसके बाद लगता है अरे यार अब तो ऑफिस और जाना है, रोने जैसे मन करता है कि नहीं? आप लोगों को कभी करता होगा? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी हाँ बिल्कुल, रेडियो का गौरव स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? आज तो ब्रो फ्राइडे है और फ्राइडे वाली वाइब चलेगी, गाने चलेंगे एक से बढ़कर एक और उसी के साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। देखो अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो मेरा सिंपल सा नंबर है 9654, बस ये चार डिजिट याद रखो 9654, उसके बाद 896896। तो इतना सिंपल सा नंबर है, आप लोग अपनी कंप्लेंट्स, अपनी जो भी शिकायतें फरीदाबाद से रिलेटेड कोई भी बातें अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए कॉल उठाने में देरी हो सकती है मगर हाँ व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने में देरी नहीं होगी। तो व्हाट्सएप का क्या है, देखो मेरे सामने खुला रहता है और फोन थोड़ा सा साइलेंट पर रहता है तो ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। तो मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ 9654896896। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आज फ्राइडे की शाम को स्वागत है आप सभी का। एंड क्या आप लोगों को पता चला फरीदाबाद की तीन लड़कियां दार्जिलिंग घूमने निकल गई थी बिना घर वालों को बताए? लेकिन मेरा सपना हुआ करता था कॉलेज टाइम में कि बिना घर वालों को बताए निकल जाऊंगा और फिर वो ढूंढते रह जाएंगे, मगर अब जब सोचता हूँ ना इस बारे में तो लगता कितनी बचकानी बातें थी वो। और इसके साथ साथ इंडिया में एक चीज़ आई है जिसे कहते हैं कंटेंट क्रिएट करो और 1,00,000 रुपए ले जाओ। कहाँ पर आई है ये चीज़, करेंगे इसके बारे में भी बात। तो ये सारा है ऑल टोटल निचोड़ आज 5 से 9 बजे तक, और 4 घंटे कब निकल जाएंगे आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा। तो चलो लेट्स बिगिन द मस्ती। दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में गाना चला रहा हूँ जो कि सारी टेंशन भुला देगा, क्योंकि गाने का नाम ही है टेंशन। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: आए शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे।
1: माझी चाशनी तू माझी खास, मी तुझा समर्थक उद्या पण आज भी बोले लो किस्मती बोले आज।

तो दिस वॉज जलेबी बेबी। और जलेबी खाने का मन किसका नहीं करता जब हल्की फुल्की सी बरसात हो जाए। बरसात हो कहानी बस मुझे ये बता दो, मैं वहाँ जलेबी लेके पहुंच जाऊंगा। क्योंकि फरीदाबाद का हाल तो कुछ ऐसा है कि बारिश देखे हुए ऐसा लग रहा है जमाने हो गए हैं। कभी बल्लभगढ़ में दो चार बूंदे गिरती है, तो कभी सेक्टर 21 साइड दो चार बूंदे गिरती है, तो कभी नहर पार दो चार बूंदे गिरती है। एक साथ पूरे फरीदाबाद में बारिश हो जाए ऐसा कब हुआ है। खैर, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और जलेबी की बात मैंने करी है ना, तो अभी ऑनलाइन एक नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उनका नाम है तुकाराम मुंडे। अब तुकाराम मुंडे का नाम वायरल क्यों हो रहा है आप सभी को पता है। उन्होंने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र FDA में है वो, और उसके बाद उन्होंने पहले तो बोला कि लूज तेल बिकना बंद कर दो। देखो उनके सिर्फ महाराष्ट्र में होएगा ये, मैं चाहता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो लूज ऑयल। मतलब जो किराने की दुकान पर जाते हो आप, बोलते हो भैया ये बोतल भर के दे दो, होता है काफ़ी सारी जगहों पर अभी भी होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं होता होगा, वो होता है अभी भी। आप गाँव के अंदर वाले एरियाज में जाओगे ना तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मॉडल्स में तेल कलेक्ट करते हैं, एंड वो तेल बहुत ज़्यादा सेहत के लिए ख़राब होता है क्योंकि उसमें केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। तो तुकाराम मुंडे ने ये तो बोल दिया, मगर अभी जलेबी की बात जब कर रहा था मैं तो उन्होंने भी बोल दिया कि अब जलेबी का रंग ज़्यादा ऑरेंज नहीं होगा, यानी कि कलर डालना इज नॉट अलाउड नाउ इन महाराष्ट्र। तो ये सारी स्टेप्स लिए जा रहे हैं तुकाराम मुंडे के द्वारा, और हैट्स ऑफ है ऐसे ऑफिसर को। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ऐसे ऑफिसर्स बने और वो सब लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें जो कि गलत खाना पब्लिक को खिलाया जा रहा है, जैसे कि चटनी में रंग डाल दिया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें, कुल्फी में रंग डाल दिया जाता है। सोचिए हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों की भी कोई ना कोई राय होगी, ज़रूर शेयर कीजिए। नंबर है 9654896896। फिलहाल दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में एक गाना चला रहा हूँ ललकारा, सुनिए इस गाने को, उनके साथ है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

0: जुबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इन तीन लड़कियों के घर वालों ने भी यही बोला होगा, नीला ले तू रिहाई। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। किन तीन लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ पता आप लोगों को कि क्या हुआ है? इंडिया में अपने एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में अपना एक शहर है फरीदाबाद, और फरीदाबाद में ही हम लोग रह रहे हैं। और फरीदाबाद की तीन लड़कियां इंटरनेट पर दार्जिलिंग की उन्होंने खूबसूरती देखी, फिर उसके बाद वो तीनों घूमने निकल पड़ी। अब कॉलेज गई और फिर कॉलेज से उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया, और फिर वहाँ से उन्होंने अपने फरीदाबाद चिमनी भाई चौक पर बिरयानी खाई, वेज बिरयानी। देखो सब चीज़ें बताऊँगा आपको। वेज बिरयानी खाई, फिर उसका मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से दिल्ली गई, दिल्ली से जाके ट्रेन पकड़ी, ट्रेन के बाद वो पहुँची जलपाईगुड़ी, और वहाँ पर पुलिस ने उन्हें ट्रेस कर लिया। एक्चुअली में उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि घर वालों को कुछ खबर ना हो और घर वाले उन्हें ढूंढ ना पाए, या फिर घर वाले रोके टोके ना, तो वो निकल गई घर से। और आपको क्या लग रहा है, छोटी बच्चियों की बात करूँ? नहीं, छोटी बच्चियों क्या नहीं, 22-23 साल की लड़कियाँ थी। एंड हो सकता है अभी मुझे उनके पेरेंट्स या फिर उनके अभिभावक या फिर उनके पड़ोसी मुझे सुन रहे हों, तो देखो पहली बात तो ये, बच्चों को मन करता है घूमने का तो पेरेंट्स को घुमाना चाहिए। दूसरी बात यह, अगर कोई बच्चा मुझे सुन रहा तो ऐसी हरकत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई नो, मेरी भी एक बार बकेट लिस्ट में था ये कि मैं घर से निकल जाऊं घूमने के लिए बिना किसी को बताए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दूं और फिर सब मुझे ढूंढते रह जाएं। मगर ऐसा नहीं होता ना, दुनिया ऐसे नहीं चलती ब्रो। आप लोगों के लिए केयर करने के लिए आपके घर वाले बैठे हैं, वो भले ही गुस्से में अपना केयर दिखाएं मगर केयर करते हैं वो। तो जितने भी बच्चों, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक गाने चला रहे हैं। एंड हाँ बच्चे, प्लीज़ कहीं घूमने मत निकलेगा, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। तुझे

टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अबीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइकी थी
4: आशा इस पंजाब।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सिर्फ 100 रुपये या 1000 रुपये चालान बचाने के लिए ही हेलमेट मत पहनिए, हेलमेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अब देखो, हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है, स्कूटी चला रहे तो हेलमेट पहनना जरूरी है।

भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी बाइक स्लिप हो जाए या फिर स्कूटी स्लिप हो जाए, तो हेलमेट बहुत कुछ करता है, हेलमेट बहुत ज़्यादा बचाव करता है। और इसी के साथ साथ एक और बात बोलना चाहूँगा कि हॉलमार्क देख कर ही हेलमेट खरीदिएगा, अच्छी कंपनी का हेलमेट खरीदिएगा, मतलब वो 500-600 रुपये वाला हेलमेट नहीं खरीदना है जो रोड साइड बिकता है ना, नहीं नहीं उसे नहीं खरीदना है आपको। और सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट क्यों पहनना है। तो आज ही सुबह सुबह की बात है, मैं मंदिर की तरफ जा रहा था, हाँ थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता हूँ मैं, तो मंदिर की तरफ जा रहा था मैं, तो मैंने देखा वहीं पर पास में पुलिस खड़ी है एंड सुबह सुबह वो चालान काट रहे थे लोगों का। एंड ठीक है उनका अपना चालान काटना बिल्कुल जायज़ है, बट वहाँ पर मैंने देखा लोग ऑफिस जाने वाले लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे एंड देवर लाइक आर्ग्यूइंग, वो बात कर रहे थे कि हम लोगों को जाने दीजिए ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं। अरे ऑफिस तो आपको जाना है बट हेलमेट तो पहनिए प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ रखता है हेलमेट। मतलब मैं किस वर्ड में समझाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, हमारा सर स्टील का तो है नहीं, लोहे का तो है नहीं, तो उसको बचाने के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही चाचा विधायक हो हमारे या फिर फूफा बदमाश हो, यमराज से तो कोई दोस्ती नहीं है ना हमारी, तो उनसे दोस्ती नहीं करनी, इसीलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी लोग अगर गाड़ी में मुझे सुन रहे हैं, तो आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स में बोलिए कि हेलमेट पहनकर ही टू व्हीलर्स चलाएं, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाएं, क्योंकि गाने एक से बढ़कर एक चलेंगे। MC Square की आवाज़ में ये गाना लाडो, रेडियो महारानी 89.6 पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

0: कुछ हटके।
1: सिनेमा का कैप्सूल।
2: हे सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल। इमरान हाशमी का शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

क्या आपको पता है अब बिहार में आप लोगों को वीडियो बनाने के 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक मिल सकते हैं अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, जिया रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। अनस्टॉपेबल इस गाने का नाम और अनस्टॉपेबल इस टाइम मैं हूं और अनस्टॉपेबल इस टाइम क्रिएटर्स हैं एंड उनकी इनकम है। आप लोगों को लगता है ना कि ये वीडियो बना रहे क्या ही कमा लेते होंगे, बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं ये लोग। और अब तो बिहार गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने बोला देखो ऐसा है जितने भी क्रिएटर्स हैं वो रजिस्टर करा लो अपने आप को अंडर बिहार गवर्नमेंट, रजिस्टर कराओगे फिर उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, फिर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी पार करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जितने भी क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उनको परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट मिलेगी। कैसे मतलब क्या होगा एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है कुछ ना कुछ जो वो लोग हर साल निकालते हैं, अब वो एड्स पे तो खर्चा करते ही हैं तो इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना एड्स की जगह कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा दिया जाए। तो कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा दिया जाएगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है और या फिर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है या फिर पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर कॉन्टेंट बनाए और फिर उसके बाद कंटेंट बनाने के बाद आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे अगर आपकी वीडियो पर 1,00,000 व्यूज़ पहुँच जाते हैं और 30 दिन के बाद मिलेंगे वो पैसे एंड ये पैसे 1,00,000 रुपये पर वीडियो तक जा सकते हैं। सोचिए अगर आपकी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज मीन्स 1,00,000 व्यूज आ जाते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये पर वीडियो बिहार गवर्नमेंट दे देगी और ये सिर्फ अभी बिहार के लिए है एंड आप लोग इसको नहीं कर सकते, मतलब फरीदाबाद में रहते हो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। और अगर आप बिहार के मूल निवासी, आपके पास सारे कार्ड एंड आधार कार्ड सब कुछ बिहार का है तो आप उधर जाके रजिस्टर कर सकते हैं, फिर आप वीडियो अपने घर से अपने स्टूडियो से बना सकते हैं और फिर उसके बाद आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं घर बैठे बैठे वीडियो बनाकर। तो कैसी लगी ये स्कीम, अच्छी है ना? तो चलिए ऐसी और भी बातें होती रहेंगी मगर उससे पहले एक प्यारा सा गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। इमरान हाशमी की एक मूवी थी, हाँ उसका गाना है ये, बहुत ही प्यारा, जन्नत 2 से रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: क्या आप लोगों ने सपने में कभी बंदर को देखा है? मतलब कि बंदर आपके पीछे पड़ गए या फिर आप बंदरों को खाना खिला रहे हो, इसका भी कोई ना कोई मतलब होता है और सारे सपने कुछ ना कुछ कहते हैं।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो को गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है सपनों को डिकोड करने का। तो इस टाइम ऑलमोस्ट मैं सपनों को डिकोड करता हूँ। तो एक बात थी मेरे मन में कि बंदर अगर आप लोग देख रहे हो तो क्या हो सकता है इसका मतलब। इसका बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने एक नॉर्मल सा बंदर देखा है तो आपकी लाइफ में खुशियां आ सकती है, नए दोस्त बनने सकते हैं और भी बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अगर बंदर को आते हुए या फिर हंसते हुए देख रहे हो आप लोग तो ये दिखाता है कि आपके आने वाले लाइफ में टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेफुल बीतने वाला है। अगर आपको सपने में बंदर ने काट दिया तब क्या होगा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई परेशानी आने वाली है या फिर मेंटल स्ट्रेस या फिर फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम लोग सपने में कहीं जा रहे हैं, बंदर को पेड़ पर देख रहे हैं या फिर उछल कूद करते हुए देख रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको करियर या फिर बिजनेस में बहुत ही जल्दी एक ग्रोथ मिलने वाली है, हो सकता है सक्सेस भी मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिकोड अबाउट आर सपने, जो हम लोग सपने में बंदर देखते हैं तो हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो ये था ऑल टोटल। एंड इसी के साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को रेडियो महारानी के थ्रू मिलती रहेगी। तो अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए प्यारा सा गाना।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहे।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

आपको पता है जब भी हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो इंसान के मन में हमेशा आता है कि क्रिकेट के बारे में बात हो रही होगी, मगर स्पोर्ट्स इज नॉट ऑलवेज क्रिकेट। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो शाम हो गई है और टाइम क्या हो रहा है, 6:30 से ऊपर हो चुके हैं, बातें चल रही है, गाने चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ अभी मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है अभी सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने वाला 23 तारीख से, परसों से, मीन्स संडे से आप लोग ये मैच देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अब आप बोलोगे टीम इंडिया में ये कहाँ है, मैं बता देता हूँ आपको, ये बैडमिंटन टीम में है और इन्होंने पहली गेम हार गए थे, मगर अभी रिसेंटली इन्होंने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप को हरा दिया है और मेंस डबल्स क्वार्टर्स में जगह बना ली है। अब सेमीफाइनल्स में जाने के लिए इनको एक और मैच जीतना पड़ेगा। और इसके अलावा वर्ल्ड कप चल रहा है हॉकी का वर्ल्ड कप के बारे में मैंने बात की थी, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया रिसेंटली, इंग्लैंड से मतलब हारे तो नहीं थे, खैर ड्रॉ हुआ था तो उसका पॉइंट तो नहीं मिला ना। और फिर उसके बाद अभी टीम इंडिया की वुमेन भी हैं और मेंस भी हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जल्दी ही टीम इंडिया, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस बार प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है इस बार, हॉकी की मैं बात कर रहा हूँ, और इस बार ज़रूर वर्ल्ड कप लेकर आएंगे टीम इंडिया। तो देखते हैं, वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। और एथलेटिक्स की बात करें तो इंडिया ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 3 मेडल हासिल करे, एक हाई जंप सिल्वर और इसके अलावा एक लॉन्ग जंप ब्रॉन्ज, और इसके अलावा एक और मेडल है उसके बारे में भी बात करेंगे, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

क्या आप लोगों को पता है कि रणबीर कपूर स्टारर रामायण जो आ रही है वो दो पार्ट में आने वाली है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, रेडियो महारानी 89.6 पर आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है। साल 2027 में अयान मुखर्जी की फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। कौन सी फिल्म होने वाली है बताओ? अयान मुखर्जी की मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग होने वाली, मगर उससे पहले रामायण पार्ट 2 की शूटिंग खत्म करेंगे रणबीर कपूर। और रणबीर कपूर की ये जो फिल्म है रामायण, अब इसकी शूटिंग चल रही है अभी पार्ट 2 की, और इसकी शूटिंग ऑलमोस्ट अगले साल मार्च तक खत्म हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार दो पार्ट में बनानी ही थी तो धुरंधर की तरह बनानी थी ना, कि एक मूवी आई उसके बाद ज़्यादा महीने का इंतजार करना नहीं पड़ा, 2-3 महीने बाद सेकेंड पार्ट भी आ गया और

रामायण जो कि हमारी हिस्ट्री है, तो उसको पब्लिक के सामने पेश करना है तो कम से कम 4 घंटे की मूवी बनानी चाहिए थी। ये मेरा अपना एक लॉजिक है, एक थिंकिंग है मेरी, इस पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट धुरंधर भी तो बनी थी 4 घंटे की, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मूवी थी, 4-4 घंटे लग जा रहे थे लोगों को, इवन 4.5 घंटे भी लग जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है 10 मिनट स्टार्टिंग के ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद बीच में इंटरवल होता है, इंटरवल 15-20 मिनट खींच दिया जाता है, तो ये थी पूरी की पूरी मूवी का निचोड़। तो अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, डिवाइन की आवाज़ में एक बहुत ही अमेजिंग गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज तो
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

क्या आपको पता है इंडिया में एक इंसान के पास कितनी लिमिट है सिम कार्ड रखने की? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि एक के पास बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स होते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कौन से नंबर पर कॉल किया जाए। तो आप लोग बताइए कितनी लिमिट है सिम कार्ड रखने की इंडिया में। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। वो क्या याद मुझे भी करती होगी, वो ये गाना चलाया था मैंने आप लोगों के लिए। अब कुछ लड़के क्या करते हैं इस चक्कर में, नया सिम कार्ड खरीद लेते हैं कि उसने इस नंबर को तो ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से कॉल कर लेता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं और लिमिट इज 9 सिम कार्ड्स पर इंडिविजुअल, 9 सिम कार्ड्स रख सकते हैं आप लोग अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। मगर मेरे मन में सवाल ये आया, 9 सिम कार्ड की लिमिट क्यों दे रखी है? 4 बहुत नहीं था, मतलब 3 भी बहुत है मेरे ख्याल से तो। बट ठीक है, अभी 9 सिम कार्ड की लिमिट है तो इसके बाद क्या होगा? अगर आप 10वां सिम कार्ड खरीदेंगे तो आपका वो सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी बार ऐसा होता है किसी की जॉइंट फैमिली होती है, उनको चाहिए सबके पास मोबाइल होना चाहिए बट सारा डेटा मेरे पास आना चाहिए। तो फिर वो इंसान अपने नाम पे बहुत सारे नंबर्स खरीद लेता है और फिर अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड इसके अलावा आप सभी को बता दूं, अभी रिसेंटली AI इंटीग्रेशन हो रहा है और फिर उसके साथ साथ बोला जा रहा सिम कार्ड भी देखा जाएगा। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। उन्होंने बोला देखो ऐसा है, अब 9 सिम कार्ड के बाद तुरंत अगर वो लिमिट एक्सीड करी तो फिर सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपके पास एक सिम कोटा है जिसके तहत आप 9 सिम कार्ड्स खरीद सकते हैं इंडिया में रहते हुए। और अगर आपका कोई पुराना सिम कार्ड जो खो गया है तो उसको बंद करवा दीजिए अभी के अभी, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी को एंजॉय करते जाइए क्योंकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बातें लेकर आते रहूंगा। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, लारे है इस गाने का नाम, मनिंदर भुट्टर की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

सिनेमा का कैप्सूल मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले ना जॉब ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

रेडियो महारानी प्रेजेंस, क्या हाल है। दिल लगाना मना था हमने, वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था, मतलब कि हमारा दिल ऑफिस में लग गया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। शो चल रहा है एचआर 896 एंड क्या हाल है। सेगमेंट का नाम है क्या हाल है एंड इसमें क्या होता है। सैटरडे को ऑफिस मीटिंग है, आपके भी है क्या, मेरे भी है। मतलब क्या होता है, मतलब यही है कि वीकेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इस बार वीकेंड का एंजॉयमेंट तो ले नहीं पाऊंगा। और जब भी आप लोग किसी से पूछो क्या हाल है और उसकी ऑफिस में वीकेंड मीटिंग हो तो फिर वो यही बोलता है कि कल संडे है लेकिन बॉस ने मीटिंग रख दी है। अब वीकेंड सिर्फ कैलेंडर में होता है, मेरी लाइफ में नहीं। वीकेंड मीटिंग में बॉडी चेयर पर होती है पर सोल, हमारी जो आत्मा है, वो मंडे की छुट्टी मांग रही होती है। क्योंकि देखो सैटरडे संडे छुट्टी तो मिलती है मुश्किल से, मेरे को सैटरडे भी नहीं मिलती, मैं तो संडे की बात कर रहा हूँ। चलिए खैर, किसी से पूछो क्या हाल है तो बोलता है सैटरडे की मीटिंग में बॉस बोलता है बस 15 मिनट लगेंगे। वो 15 मिनट कौन से टाइम जोन की बात करता है वो, मतलब वो 15 मिनट कभी भी 15 मिनट नहीं होते, उसके आगे 1 घंटा लगा होता है। मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा, 4 घंटा 15 मिनट ये मीटिंग चल जाती है काफी बार। और वीकेंड पर अगर बॉस ने मीटिंग बुला ली तो फिर मंडे से फ्राइडे तक काम और सैटरडे संडे ट्रॉमा रिकवरी हो जाता है। होता तो है, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा। और अगर किसी इंसान से पूछ लो जिसकी सैटरडे संडे मीटिंग रखी हुई है ऑफिस में, उससे पूछ लो क्या हाल है, बोलता है संडे को जूम या फिर टीम्स खोला हुआ है, कैमरा ऑफ था पर मेरी आंखों के आंसू HD में आ रहे थे। वीकेंड मीटिंग में सबका माइक म्यूट है लेकिन अंदर सबके अंदर से क्या निकल रहा होता है, वो एक बौछार हो रही होती शब्दों की, बहुत ही अच्छी बौछार होती है। आप सभी को जानते हैं। खैर, बॉस पूछता है गाइज जस्ट अ क्विक वीकेंड कैचअप। फिर उसके बाद एम्प्लॉय क्या बोलता है, सर मेरा वीकेंड तो कैचअप करने निकला था, आपने पकड़ लिया। हाँ ऑब्वियसली हम लोग वीकेंड क्यों ढूंढते हैं, ताकि हम लोग बाहर घूमने जा सकें। और वीकेंड मीटिंग के बाद समझ आता है कि ऑफिस से सैलरी नहीं, वीकेंड का रेंट भी मिलना चाहिए क्योंकि वीकेंड ही तो एक ऐसी चीज है जिसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आज का क्या हाल है अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर। आप लोग भी बताइए आपके क्या हाल है। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना केसरिया फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

मौसम विभाग की माने तो हर रोज बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश हो रही है, शाम को भी बारिश हो रही है, मगर कहाँ हो रही है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आप सभी का आरजे गौरव इन द हाउस। और मौसम विभाग का मानो तो मैं अभी बाहर बारिश हो रही है, मगर मैं बाहर जाके देखूंगा कहीं बारिश नहीं हो रही होगी। आपके घर के पास अगर हो रही है तो इधर भी भेज देना, मतलब मेरे से एड्रेस चाहिए तो मेरे को फ़ोन करो, नंबर है मेरा 9654896896। फिलहाल अभी को आपको बता देता हूँ, आज ना बोला था मौसम विभाग ने कि 40% चांसेस है बारिश के, और फिर कल बोला हुआ है 50 से 60% चांसेस है बारिश के। लग रहा है आपको आएगी? मुझे तो नहीं लग रहा, मतलब मेरे को उम्मीद भी नहीं है, मैं खो चुका हूँ उम्मीद अपनी सारी, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, अब मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है इस मौसम विभाग से। खैर बारिश की अगर बात करें तो यार मानसून का सीज़न है, एंड मानसून के सीज़न में बारिश ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके साथ साथ बता दूं आपको कि अगला पूरा हफ्ता आपका सूखा जाने वाला है, और फिर अगले हफ्ते फ्राइडे को यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन हो सकता है आपको भारी बरसात देखने को मिल जाए, जैसे कि लास्ट ईयर देखने को मिली थी। याद है ना लास्ट ईयर कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी रक्षाबंधन वाले दिन। सुबह सुबह मैं गया था अपनी बहनों के घर, एंड मुझे पता है मैंने गाड़ी कैसे निकाली है पानी के ऊपर से, क्योंकि पानी के अंदर तो चल नहीं रही थी गाड़ी, पानी के ऊपर तैर रही थी गाड़ी। तो ये भगवान ना करे ऐसी वाली बारिश हो, बट हाँ बारिश तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो इस पर आप लोगों की भी कुछ ना कुछ राय होगी, उस राय को एक मैसेज में डालिए और भेज दीजिए, नंबर है जी 9654896896। व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। और अभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो सवाल ये है कि आसमान का कलर कैसा होता है? ब्लू, मैं बोलूँगा सफायर, क्योंकि गाने का नाम है सफायर। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हंसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मनोदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि कैंसर की वैक्सीन फाइनली बन गई है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, ऐसी चीज पर जोक कौन कर सकता है। और ये बिल्कुल एक कहते हैं ना, ट्रायल्स जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस, रेडियो को गौरव भी कहते हैं। एंड स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मॉडर्ना एंड मर्क नाम की एक कंपनी है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने सक्सेसफुल रिजल्ट पा लिए फॉर स्किन कैंसर, और लास्ट स्टेज ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का। एंड अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई, देखो पहले ट्रायल्स तो सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब लास्ट स्टेज ट्रायल चल रहा है, अगर ये भी सक्सेसफुल हो गया तो सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। और बता दूं आपको, ये एक बहुत ही बड़ी थेरेपी होती है, mRNA करके थेरेपी होती है, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स शो किए। और फिर उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को पब्लिक कर दिया कि एक ब्रेक थ्रू मिल गया है कैंसर ट्रीटमेंट में, और स्किन कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलमोस्ट तैयार है। और बता दूं आपको, अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में जाऊं क्या, यहाँ पे नहीं जाते हैं, एक वर्ड होता है मेलानोमा, उसको कंबाइन किया कीट्रूडा के साथ, और फिर उसके बाद देखा कि जितनी भी ये जो रिकरेंस होता है और जो कैंसर फैलता है वो कम हो गया था। और अब आगे आने वाले ट्रायल्स में बहुत सारे रेगुलेशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए ये आगे ट्रायल करेंगे और फिर उसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, बस यही प्ले करते हैं। और अभी रिसेंटली आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में भी एक ऐसा प्लांट है जो कि हिमालयन रीजन्स में मिलता है, उसको वहाँ की लैंग्वेज में किलमोड़ा कहते हैं, और वो भी उसकी जड़ भी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और उस पर भी अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इंडिया भी एक छोटा सा ब्रेक थ्रू पा ले कैंसर ट्रीटमेंट में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गाने चलेंगे आप सभी के लिए। मैं हूँ गौरव आपके साथ, और आप सुन रहे हैं शो HR 896।

0: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

इन तीन लड़कियों ने भी यही सोचा होगा कि वी आर अनस्टॉपेबल, है ना? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। किन तीन लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ पता है आप लोगों को कि क्या हुआ है? इंडिया में अपने एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में अपना एक शहर है फरीदाबाद, और फरीदाबाद में ही हम लोग रह रहे हैं। और फरीदाबाद की तीन लड़कियां इंटरनेट पर दार्जिलिंग की उन्होंने खूबसूरती देखी, फिर उसके बाद वो तीनों घूमने निकल पड़ी। अब कॉलेज गई, और फिर कॉलेज से उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया, और फिर वहाँ से उन्होंने अपने फरीदाबाद चिमनी भाई चौक पर बिरयानी खाई, वेज बिरयानी। देखो सब चीज़ें बताऊँगा आपको। वेज बिरयानी खाई, फिर उसका मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से दिल्ली गई, दिल्ली से जाके ट्रेन पकड़ी, ट्रेन के बाद वो पहुँची जलपाईगुड़ी, और वहाँ पर पुलिस ने उन्हें ट्रेस कर लिया। एक्चुअली में उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि घर वालों को कुछ खबर ना हो और घर वाले उन्हें ढूंढ ना पाए, या फिर घर वाले रोके टोके ना, तो वो निकल गई घर से। और आपको क्या लग रहा है, छोटी बच्चियों की बात करूँ? नहीं, छोटी बच्चियों क्या नहीं, 22-23 साल की लड़कियाँ थी। एंड हो सकता है अभी मुझे उनके पेरेंट्स या फिर उनके अभिभावक या फिर उनके पड़ोसी मुझे सुन रहे हों, तो देखो पहली बात तो ये, बच्चों को मन करता है घूमने का तो पेरेंट्स को घुमाना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर कोई बच्चा मुझे सुन रहा था, ऐसी हरकत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई नो, मेरी भी एक बार बकेट लिस्ट में था ये कि मैं घर से निकल जाऊँ घूमने के लिए बिना किसी को बताए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दूँ और फिर सब मुझे ढूंढते रह जाएं। मगर ऐसा नहीं होता ना, दुनिया ऐसे नहीं चलती ब्रो। आप लोगों के लिए केयर करने के लिए आपके घर वाले बैठे हैं, वो भले ही गुस्से में अपना केयर दिखाएं मगर केयर करते हैं वो। तो जितने भी बच्चों, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक गाने चला रहे हैं। एंड हाँ बच्चे, प्लीज़ कहीं घूमने मत निकलेगा, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों ने सपने में कभी बंदर को देखा है? मतलब कि बंदर आपके पीछे पड़ गए या फिर आप बंदरों को खाना खिला रहे हो, इसका भी कोई ना कोई मतलब होता है और सारे सपने कुछ ना कुछ कहते हैं। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है एंड रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है सपनों को डिकोड करने का। तो इस टाइम ऑलमोस्ट मैं सपनों को डिकोड करता हूं। तो एक बात थी मेरे मन में कि बंदर अगर आप लोग देख रहे हो तो क्या हो सकता है इसका मतलब। इसका बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने एक नॉर्मल सा बंदर देखा है तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, नए दोस्त बनने सकते हैं और भी बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अगर बंदर को आते हुए या फिर हंसते हुए देख रहे हो आप लोग तो ये दिखाता है कि आपके आने वाले लाइफ में टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेफुल बीतने वाला है। अगर आपको सपने में बंदर ने काट दिया तब क्या होगा? तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई परेशानी आने वाली है या फिर मेंटल स्ट्रेस या फिर फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम लोग सपने में कहीं जा रहे हैं, बंदर को पेड़ पर देख रहे हैं या फिर उछल कूद करते हुए देख रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको करियर या फिर बिजनेस में बहुत ही जल्दी एक ग्रोथ मिलने वाली है, हो सकता है सक्सेस भी मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डीकोड अबाउट आर सपने, जो हम लोग सपने में बंदर देखते हैं तो हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो ये था ऑल टोटल एंड इसी के साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को रेडियो महारानी के थ्रू मिलती रहेगी। तो अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए प्यारा सा गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

जब भी हम लोग जिम जाने की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या मुझे अभी से ही प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये पाउडर वाउडर मत खाया करो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। वक्त हो चुका है जिम ब्रो का। मैं हूं आपका जिम ब्रो एंड जिम की टिप्स लेकर आते हैं इस टाइम। और अभी मैं बस ये बोलना चाहता हूं, देखो काफ़ी सारे ना मिथ हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, और जैसे कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये पाउडर वाउडर मत खाया करो, शरीर ख़राब हो जाता है, कल को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके साथ, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ये हो जाता वो हो जाता है। देखो मैं मानता हूँ जो लोग बोलते हैं ना ये सब चीज़ें, उस टाइम पर जो सप्लीमेंट्स आया करते थे उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। जो पाउडर्स आते थे, जो उस टाइम वे तो था ही नहीं, जो उस टाइम प्रोटीन पाउडर्स आते थे उसके अंदर स्टेरॉइड्स मिला दिए जाते थे जस्ट टू लुक बिग, लाइक स्टेरॉइड्स बहुत जल्दी एक्ट करते ना इसलिए। तो अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये होगी कि अगर आप लोग अभी न्यू भी हैं, न्यू कमर जिम में, तो आप लोग अभी अपना जो प्रोटीन का जो इनटेक है वो आप अपनी डाइट से ही कंप्लीट कीजिए। अगर वेजिटेरियन है तो पनीर खाइए, टोफू खाइए, उसके साथ साथ बहुत सारी दालें हैं और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां हैं जिसके थ्रू आपको प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप लोग एगिटेरियन है तो अंडे तो खा ही सकते हैं, और अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तब तो आपके पास प्रोटीन का भंडार है, आप लोग खाइए जो आप खा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोगों का जो प्रोटीन इनटेक है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर आप लोगों को क्या करना है? आपको एक कोई ट्रस्टेड ब्रांड ढूंढना है, फिर उसके बाद उसका एक प्रोडक्ट ना सैंपल के तौर पे मंगवाइए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जो वे प्रोटीन होता है ना वो काफ़ी बार डाइजेशन में दिक्कत देता है, क्योंकि हर इंसान आज की डेट में ऑलमोस्ट लैक्टोज इंटॉलरेंट होता जा रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट हर इंसान होता जा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, एनीथिंग। तो मैं पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, अगर एक्सपर्ट की राय नहीं ले सकती तो फिर एक बार सप्लीमेंट को लाइक उसका सैंपल मंगा के देखिए और उसको ट्राई करके देखिए कि कहीं आपको ब्लोटिंग तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो फिर स्विच टू आइसोलेट प्रोटीन, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, उसको ट्राई कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी को ऐसे और भी टिप्स लेकर आता रहूंगा, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी पर।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो।

ओ भाई लोग, फ्राइडे है, क्या प्लान्स है जी तुम्हारे? और जो मैंने अभी गाना चलाया था ना सुखबीर पाजी की आवाज में, ये गाना मुझे ऐसा लगता है, देखो आज की डेट में तो चलना ही है हर जगह, जहां भी पार्टी होगी वहां ये गाना जरूर चलेगा। स्टार्ट तो ऐसी गानों से होता है, फिर उसके बाद एंड आते आते पता नहीं क्यों इंसान सूफी सा हो जाता है, सूफी महफिल में बैठ जाता है और फिर गाने सुनता है पुराने पुराने। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, मेरी आवाज अच्छी नहीं है नो, बट देखो ये रियलिटी है, इंसान ना जितना एज में बड़ा होता जाता है उसके बाद फिर गाने में भी चॉइस उसकी पुरानी होती जाती है। हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं वक्त में, मगर गानों की चॉइस पीछे होती जा रही है। 90s, 60s, 70s ऐसे गाने सुनने में मजा आ रहा है आजकल। तलत महमूद साहब का वो जो गाना था, इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, ये क्या प्यारा गाना है यार। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो वक्त भले ही आगे जा रहा हो मगर हमारा जो माइंड सेट है वो पीछे की तरफ जा रहा है, और अभी वक्त की मेहनत मैंने कर दी है तो वक्त हो चुका है मेरा यहाँ से कट लेने का। फ्राइडे मैं भी तो एंजॉय करूंगा, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सायनारा, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और इसी के साथ साथ वापस आएगी गीत विदेश बाजिया, और आप सभी के लिए देवान पाजी की आवाज में गाना।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया, क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है, और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है, बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूँ तो किस से कहूँ, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्पररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिए। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन, और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती है। और जैसे वो हमसे दूर जाता है, सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमेच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग से ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है। लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है। हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है, और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है, और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूं गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे।
1: देखो

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके लेकिन

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में, हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहाँ किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तो बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है, इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठते हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है, और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए, और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजू की दिल दिया गल्ला.

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाएं, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या

और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्कबाज़ी, या मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के

0: किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
4: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
6: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहां हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है रमेश बाबू। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहें, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाएं यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके और रात के इस खूबसूरत वक्त में मैं हूं आपके साथ आपके इश्क वाली गीत और ये है इश्क बाजियां, जहां रात थोड़ी गहरी होती है, बातें थोड़ी दिल से होती हैं और मोहब्बत को समझने के लिए हम पहुंचते हैं उन शायरों के पास जिन्होंने इश्क को सिर्फ लिखा नहीं है बल्कि जिया है, क्योंकि ये है इश्क शायराना। और आज की रात जिस शायर के साथ बैठ कर मोहब्बत को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे वो नाम है बशीर बद्र साहब। उन शायरों में से हैं जिन्होंने मोहब्बत को किसी एक डेफिनेशन में बांधने की कोशिश नहीं की। उनके यहाँ प्यार सिर्फ मिलना नहीं है, प्यार में इंतजार भी है, दूरी भी है, शिकायत भी है, मनाना भी है और कभी कभी किसी को उसकी जिंदगी में वापस छोड़ देने का दुख भी है। उन्होंने मोहब्बत को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाकर नहीं लिखा। उनकी खूबी यही है कि उनकी बात सुनकर लगता है अरे ये तो मैंने भी महसूस किया है, बस शब्द नहीं दे पाया। उनकी शायरी में एक लवर है जो सामने वाले से बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन डिमांड नहीं करता, वो शिकायत करता है मगर रिश्ते की इज्जत के साथ। उनकी मोहब्बत में एक सॉफ्टनेस है, एक तहजीब है और सबसे खूबसूरत बात उनकी शायरी हमें सिर्फ प्यार करना नहीं सिखाती बल्कि प्यार में इंसान बने रहना सिखाती है। और आज की रात हम बशीर बद्र साहब के कुछ ऐसे अल्फाज के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि उनकी लिखी मोहब्बत आज हमारे रिश्तों में कहां कहां जिंदा है। इश्क बाजियां पर रात अभी लंबी है और मोहब्बत की बातें अभी बाकी है। अब वक्त है खूबसूरत गाने का, रेडियो महारानी पर जुड़े रहिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, स्टे ट्यून्ड।

कुछ शायर ऐसे होते हैं जो मोहब्बत को बहुत दूर से देखते हैं, और कुछ शायर ऐसे होते हैं जो मोहब्बत को बिल्कुल पास जाकर उनकी धड़कन तक सुन लेते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का ये खास सेगमेंट इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं बशीर बद्र साहब के बारे में, जिन्होंने लिखा है, यूं बेसबब ना फिरा करो कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन इसके अंदर एक पूरा रिश्ता छुपा हुआ है। कोई शाम घर में रहा करो, ये सिर्फ किसी को घर पर रुकने के लिए कहना नहीं है, ये शायद उस इंसान से कहना है जो हर वक्त बाहर की दुनिया में खुद को ढूंढता है। तो वो कह रहे हैं, कभी मेरे पास भी बैठो। आज हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है, बस उन लोगों के लिए नहीं जिनसे हमें सच में बात करनी चाहिए। हम किसी को आई मिस यू लिख देते हैं, लेकिन उसके साथ 10 मिनट बैठने का वक्त नहीं निकाल पाते। हम रिलेशनशिप स्टेटस लगा सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में मौजूद नहीं रह पाते। और बशीर बद्र साहब की ये लाइन उसी प्रेजेंस की बात करती है। किसी के साथ होना सिर्फ उसके सामने बैठना नहीं है, किसी के साथ होने का मतलब उसकी बात को बिना फोन देके सुनना, उसकी चुप्पी को नोटिस करना, उसके चेहरे से समझ जाना कि कुछ हुआ है। और फिर उनकी दूसरी खूबसूरत बात, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। क्या किसी इंसान को पढ़ना भी आता है हमें? क्योंकि हर इंसान एक किताब है, कुछ पन्ने वो खुद पढ़ने देता है, कुछ पन्नों पर चुप्पी होती है, और कुछ पन्ने इतने ज्यादा निजी होते हैं कि उन्हें खोलने के लिए परमिशन नहीं बल्कि ट्रस्ट चाहिए। शायद प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है, किसी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। और अगर आपके पास आज भी कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बिना कुछ कहे समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए ये भी एक बहुत खूबसूरत किस्म की मोहब्बत है। इसी एहसास को एक गाने के साथ थोड़ा सा और महसूस करते हैं। रेडियो महारानी सुनते रहिए, मैं हूँ आपके साथ आपके इश्क वाली गीत

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां रेडियो महारानी पर। रात का ये खूबसूरत सफर जारी है और मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं उस शायर की जिसने मोहब्बत के साथ साथ मोहब्बत के बाद बची हुई खामोशी को भी बहुत खूबसूरती से लिखा, बशीर बद्र साहब। और अब उनकी एक ऐसी बात जो शायद उन सब लोगों के दिल तक पहुंचेगी जिन्होंने कभी किसी को बहुत चाहा हो और फिर उसे अपनी जिंदगी से जाते हुए देखा हो। बशीर बद्र साहब कहते हैं, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। कभी सोचा है हम किसी को भूलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि शायद हमें उस इंसान की उतनी आदत नहीं होती जितनी उससे जुड़ी उम्मीद की। उम्मीद की कि एक दिन उसका मैसेज आएगा, एक दिन वो समझेगा कि उसने क्या खोया है, एक दिन वो वापस आएगा, एक दिन वो कहेगा मुझे तुम्हारी याद आती है। और इसी एक दिन के इंतजार में हम कितने सारे आज बर्बाद कर देते हैं। बशीर साहब कहते हैं, जिसने तुम्हें दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। कितनी मुश्किल बात है ना, क्योंकि किसी को भूलना सिर्फ उसका नाम भूल जाना नहीं है, किसी को भूलने का मतलब उस कहानी का वो आखिरी पन्ना भी बंद कर देना जिसे हम बार बार पढ़ते रहते हैं। और शायद हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप ये उम्मीद करना बंद कर दें कि सामने वाला वापस आएगा, फिर अचानक आपको महसूस होता है कि जिंदगी में रास्ते सिर्फ एक नहीं होते, अभी राह में कई मोड़ है। कितनी खूबसूरत उम्मीद है इस लाइन में, जिसने आना था वो चला गया लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है अगले मोड़ पर आपको कोई ऐसा मिले जो आपको छोड़ने के बहाने ना ढूंढे, जो आपके साइलेंस को भी पढ़े, जो आपके साथ रहना सिर्फ अच्छे दिनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे। और अगर कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी अगला इंसान आने से पहले हमें खुद के पास वापस आना पड़ता है। तो अगर आज की रात किसी का नाम आपके दिल में है और आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा, तो आज उसे वापस पाने की दुआ मत कीजिए। बस इतना कहिए, जहाँ भी हो खुश रहो और मुझे भी तुम्हें भूल कर खुश रहने की ताकत मिल जाए। शायद यही खूबसूरत क्लोजर है। और इसी एहसास के साथ अब इस रात में एक खूबसूरत गाना शामिल करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, मैं हूँ आपके साथ आपके इश्क वाली गीत और इश्क बाजियां में ये सिलसिला अभी जारी है। स्टे ट्यून्ड।

अभी बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. Radio Maharani पर रात धीरे धीरे और गहरी हो रही है और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। तो आज के इश्क बाजिया में हम बशीर बद्र साहब के साथ मोहब्बत को थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब तक हमने बात की किसी के आने की, किसी के जाने की और उस इंसान को भूलने की जिसने हमें अपनी जिंदगी से भुला दिया। लेकिन मोहब्बत की एक और शक्ल होती है, किसी को संभालना। बशीर साहब लिखते हैं, ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इन्हें आंसुओं से हरा करो। एक उदास पेड़ की तस्वीर है यहाँ, पतझड़ में खड़ा हुआ एक पेड़ जिसकी शाखों पर शायद अब कुछ बचा नहीं है, और शायर कहते हैं ये तुम्हारे घर की बहार है, इन्हें आंसुओं से हरा करो। यानी जिस चीज को तुम आज तक सूखा हुआ देख रहे हो ना, हो सकता है उसमें अभी भी जिंदगी बची हो, बस उसे थोड़ी मोहब्बत चाहिए। और शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, हम किसी इंसान को देखते हैं, वो चुप है, इरिटेट है, दूर है, और हम तुरंत कंक्लूजन निकाल देते हैं, इसका एटीट्यूड बदल गया है, अब इसे फर्क नहीं पड़ता, शायद प्यार खत्म हो गया है। लेकिन हम उसे ये पूछना भूल जाते हैं, तुम थके हुए हो क्या? हो सकता है सामने वाला आपसे नाराज नहीं, बस जिंदगी से थोड़ा सा परेशान हो, हो सकता है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता, बस खुद के अंदर बहुत कुछ संभाल रहा हो। और ऐसे वक्त में प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, कभी कभी प्यार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उसके पास बैठकर कहें, कोई बात नहीं, तुम बोलना चाहो तो मैं सुन रहा हूँ, नो जजमेंट नो एडवाइस, बस प्रेजेंस। क्योंकि कुछ लोग सोल्यूशन से नहीं सुकून से ठीक हो जाते हैं, और शायद इसीलिए बशीर बद्र की ये लाइन सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये हमें रिलेशनशिप्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है। जब कोई आपके प्यार में अपना घर समझने लगे तो उसकी उदासी को भी अपने घर की चीज समझिए। हर वक्त उसे खुश रखना आपकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन जब वो टूट रहा हो तब उसे अकेला छोड़ देना भी प्यार नहीं। तो आज रात अगर कोई आपके साथ थोड़ा सा चुप है, थोड़ा खोया हुआ है या बिना वजह के बस उदास है, एक बार उसके पास जाइए, शायद उसे आपकी कोई बड़ी बात नहीं चाहिए, शायद सिर्फ आप चाहें। और अगर आज की रात आपने किसी के दिल में छोटी सी भी बहार लौटा दी ना, तो यकीन मानिए उससे खूबसूरत इश्क कुछ नहीं है। मैं आपके साथ हूँ आपके इश्क वाली गीत, ये था आज का इश्क शायराना बशीर बद्र साहब के साथ। अब इस खूबसूरत एहसास को एक खूबसूरत गाने के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रेडियो महारानी पर आप मेरे साथ बने रहिए।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।